छाई बरखा बहार आंगना फुहार निगती निग्न से अस्तख आशा जी और जी लता आशा और लता मिल के गाए हैं फिल्म चिराग में से निकाल कर निगती निग्न से अस्तख 1969 का ये गीत हमने पेश की मदन मोहन के साज पर। चलिए मदन मोहन जी के बाद हम पेश कर रहे शंकर जय किशन, क्या शंकर जय किशन इस तरह से

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए इसलिए।

0: अपना बना लो, हाथ जरा थाम लो, बार बार पूछो ना, दिल से भी काम लो।
1: काम का बताओ,
0: काम सीधा साधा है,
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है,
1: क्या?
0: आजा आजा,
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाबा,
0: सुनो तो, नोना सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है,

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार को निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

आप यहाँ आए किस लिए? वादे तो बहुत लिए, लेकिन करना पड़ेगा जरूर, तो अवश्य करेंगे। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और ये गीत इस तरह से है।

आओ प्यार कर ले। जी हाँ, फिल्म सच्चा झूठा में से निकाले हैं आशा जी और साथी मिल के आपको सुनाएं निगती सैफ तक का ये गीत है। कल्याण जी आनंद जी के साथ पर गुलशन बावरा का लिखी हुई गीत हमने पेश की फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम। अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, एक बार फिर देखते हैं लता जी है।

वाह शाबाश, क्या बात है लता जी की आवाज़ में हम पेश किए फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में शकील बदायूं की लिखी हुई गीत लता जी की आवाज़ में फिल्म आदमी में से निकाल कर नौशाद अली के साज पर। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, ये भी एक लता जी का गीत है और साथ दे रही लता जी और मुकेश मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल रहे हैं। ये प्यारा गीत सुन लीजिएगा मुकेश जी और लता जी।

ये किसने गीत छेड़ा और किसने किसकी जुल्फ बिखरी। जी हाँ, लता जी और मुकेश जी मिल के आपको सुनाए हैं फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल कर हमने पेश किए। चलिए, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, बहुत आप पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से।

फिल्म सुर में से निकाल कर महालक्ष्मी ने आपको सुनाए द्रुमर, तो पीट पाट कर द्रुम रख दिया। बहरहाल फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका स्वागत है। फिल्म सुर में से निकाले जैसे मैंने कहा और हमने पेश की। चलिए अगला गीत। ठहर जाओ अगर आपको कहीं जाना है थोड़ी देर रुक जाओ, हाँ थोड़ी देर रुक जाना।

थोड़ा सा ठहरो लता जी, आपको सुनाए ये शानदार गीत फिल्म विक्टोरिया तूनो द्री में से निकाल कर हमने पेश किए है ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी आरती बर्मन के साज पर। फिल्म तो आपने अवश्य देखे होंगे, फिल्म सीता और गीता निगतिन तुई जी मित 1972 का ये गीत है, 72 का ये फिल्म है और रमेश सिप्पी और जी पी सिप्पी बनाने वाले इस फिल्म का। रमेश सिप्पी, जी पी सिप्पी, ये दोनों सिप्पी जो है ये दोनों फिल्म शोले के बनाने वाले हैं और साथ मिलकर क्या नाम है सलमान खान का पिता का, सलीम खान, सलीम खान और जी पी सिप्पी ने मिल के ये फिल्म बनाए हैं, फिल्म सीता और गीता। हम इसे निकाल कर ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

अच्छा जी, ओ किशोर कुमार जी, फिल्म सीता गीता में से निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, ये गीत रफ़ी साहब का ये गीत है, बहुत पुराना गीत है, लेकिन फिर शस्त्र का ये गीत को लेकर कितने बैठक गाना में भी गाए हैं, लेकिन ये बैठक गाना निकाले कहाँ से? फिल्म फिल्म जी हाँ, फिल्म सजनी से भैले मुलाकात, फिल्म का नाम है सजना से भैले मुलाकात, फिल्म का नाम है सजना से भैले मुलाकात। रवि साहब आपको सुना रहे हैं निकिति फिर शस्त्र का ये गीत, सुन लीजिएगा।

0: दिखली।
1: रफी साहब की आवाज में आपको सुनाया गया है ये गीत, जब से दिखली सूरतिया तुहार गोरिया। जैसे मैंने कहा नहीं कि थी, फिर से अशक का गीत है, फिल्म है सजना से भैले मिलनवा, उसी फिल्म में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं। तो क्या ख्याल है अगर हम ये चलाएं आपके लिए कि लोग तो कहते हैं लेकिन पता नहीं निर्णय आपका क्या है, दिल उसे ही देना चाहिए जो आपके लिए जान दे, पता नहीं सुनते हैं।

उदित नारायण जी आपको सुनाए, चांद की चांदनी गुलामों की कली, मेरे लिए तुझे रब ने बनाया है। हमने बहुत कोशिश की ढूंढने के लिए कौन सा फिल्म कहा या नॉन फिल्म का होगा, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो, अगर मुझसे बता देते तो बहुत अच्छा होता। हमने बहुत ढूंढे, नहीं मिला, और शायद सुनने वाले श्रोताओं को भी अच्छा लगे। ये फिल्म का नाम, कौन सी फिल्म का ये गीत है, चलिए गीत हम आपको सुनाते हैं। चलिए जी हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत है।

रफी साहब आपको सुनाए शमा जले या न जले। www.pinfound.fm.nl पर आप चून है जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए चलिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत इस तरह से।

दीवाने को प्यार से देखो, प्यार से पूछो। रफी साहब ने तो छेड़ दी। जी हाँ, प्रेमिका को छेड़ दी तो क्या मुकेश जी ये कह रहा है? अगर आपने प्रेमिका को छेड़ दी तो चलो उनकी तारीफ कर देते हैं हम। दर्पण को जे देखा मैं तो मुकेश द हार्ट।

दर्पण को देखा जब तूने किया सिंगार, बार बार किया सिंगार। मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत। इस तरह से फिल्म उपासना में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयाँ पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है, तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है, भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आप सभी को हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। मुझसे पहले आप सभी के सेवा किए थे श्याम पूरन जी, यानी भाई श्याम पूरन जी, और उन्होंने मुझे देवी कहा। मैं तो कोई देवी वेवी नहीं हूँ। सुनने वालों, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ।

आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज़ लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर भजन हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते और सभी दुखी प्राणियों के लिए, और ख़ास करके ये भजन हम पेश करते हैं भाई जगदीश लक्ष्मण जी के वास्ते और प्रदीप नाथू जी के वास्ते, क्योंकि इन दोनों का तंदुरुस्ती जो ठीक नहीं चल रहा था लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर है, तो ख़ास करके इन दोनों के नाम हम ये भजन पेश करते हैं और आप सभी सुनने वालों के लिए। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सुनोरे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी, हरि के भरोसे हाको गाड़ी। और ये गीत हमने वेरी वेरी स्पेशली चलाए हैं जगदीश लक्ष्मण जी के वास्ते और प्रदीप नाथू जी के वास्ते, क्योंकि इन दोनों का तंदुरुस्ती कुछ ठीक नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। और सभी दुखी प्राणियों के लिए हमने ये भजन चलाए हैं। मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं सुनने वालों।

दमाइती मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। होता है सुनने वालों, याद ना जाए बीते दिनों की, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं

ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही आपका हर एक पल हो। ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही आपका हर एक पल हो। जितनी खुशियाँ आपके पास आज है इससे भी ज़्यादा कल हो। जो अभी अभी अपने बिस्तर से उठे हैं उसे हम गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे। प्रोग्राम को आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं।

जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। अभी आप सुन रहे थे किशोर दा की आवाज़ में, और ये तो सच्चाई है सुनने वालों। मुझे ज़िंदगी की सच्चाई उस वक्त पता चली जब रास्ते पर पड़े फूलों ने मुझसे कहा कि दूसरों को ज़्यादा खुशबू देने वाले अक्सर यूं ही कुचल दिए जाते हैं। सुनने वालों, ये गीत पहले बहुत ज़्यादा चलते थे रेडियो पर, यानी रेडियो पर, और जब किसी के शादी होती थी या विवाह संस्कार होते थे तो बहुत ज़्यादा ये गीत चलते थे। जीवन में पिया तेरा साथ रहे,

मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, फ्रॉम द मूवी साथी से हमने पेश किया है सुनने वालों। मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा। ये तो सच है सुनने वालों कि मेरा प्यार आप लोगों के लिए ऐसा ही है। फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा, फ्रॉम द मूवी वो रात फिर नहीं आएगी। हम सफ़र मेरे हम सफ़र लता जी आपको सुनाने वाले हैं, फिल्म का नाम है पूर्णिमा।

आप सुन रहे थे हम सफ़र मेरे हम सफ़र पंख तुम परिवाज हम, लता जी के साथ में द माइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी पूर्णिमा। कर ले दिल की बात, अरे कर ले दिल की बात, आज मौका है पता है, यानी पता नहीं है कि ये मौका फिर मिले ना मिले, तो अगर आपको दिल की बात करनी है ना तो ज़रूर कीजिएगा।

कर ले दिल की बात, कर ले दिल की बात, आज मौका है। सुनने वालों पता नहीं ये मौका फिर मिले ना मिले, अगर आपको दिल की बात करनी है ना तो ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। फ्रॉम द मूवी एक हसीना दो दीवाने।

अभी आप सुन रहे थे दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। जी हाँ, बनारस है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं पूरब से जब सूरज निकले।

अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, पूरब से जब सूरज निकले फ्रॉम मूवी बनारस से हमने पेश किए हैं। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तो प्यार ना कर, फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं सुनने वालों।

मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार ना कर, फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। फ्रॉम द मूवी सफ़र, लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबे जब देव की नैया सामने थे किनारे। सुनने वालों, मैं आप सभी को कुछ बतलाना चाहती हूँ। एक गीत जो है, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये पूछेगा क्या। ये गीत मेरे दिल को छू जाता है सुनने वालों। और एक कॉन्सर्ट थी साउथ प्लान में 24 तारीख दिसंबर को, और ये गीत को गाए थे वहाँ पर उर्मिला शिवराम जी। बहुत खूबसूरत से उन्होंने ये गीत को गाया है, तो चलिए ये ओरिजिनल मिलकर सुनते हैं।
1: सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है, सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये पूछेगा क्या। और जैसे मैंने आप सभी को बताए थे कि 24 तारीख को एक कॉन्सर्ट थी थिएटर साउथ प्लाइन में, तो वहाँ पर उर्मिला शिवराम जी ने ये गीत को गाए थे, बहुत खूबसूरत थी। और आप सभी को भी पता होगा कि ये किसकी बेटी है, ये है राम नारायण शिवराम जी की बेटी। सजनवा बैरी हो गए हमार, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में आप सुनेंगे सुनने वालों।

सजनवा बैरी हो गए हमारे भैया, आप सुन रहे थे सुनने वालों। किसी राह हमें किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़कर मेरे हम सफर, लता जी के साथ में द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं सुनने वालों।

किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़कर मेरे हम सफ़र। लता जी के साथ में मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, गुमराह है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं इन हवाओं में इन फिजाओं में।

0: फ्रॉम द मूवी लीडर से हमने पेश की है सुनने वालों तेरी हुस्न की क्या तारीफ करूं। अभिनेत्री इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सारेगामा पा पा।
1: बोलो
2: हसो मत, बोलो

फिल्म अभिनेत्री से हमने पेश किया है सुनने वालों सारेगामापा, अभी आप सुन रहे थे। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया, रखवाला है फिल्म का नाम।

0: मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों,
1: मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, जब मैं सूर्योदय या सूर्यास्त का जादू देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कोई भी बढ़ता हमेशा नहीं रहती है, कोई भी ना और कोई भी रुकावट ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। मित्रों, इस हमेशा बदलती दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है मित्रों, इसीलिए समय के साथ चलें और जिंदगी के सफर का मजा लें। जिंदगी के सफर का मजा लो मित्रों। लीफ मैनसन असिक द माखीफान जोंस ओपखांग ऑफ जोंस ओंदरखांगजी बसेफिक दैट हीन ओपकोम्स परमानेंट इस en geen tegenslag lang duurt. Alles verandert in dit steeds veranderende universum, beste mensen. Dus blijf positief, vaar mee met de stroom van de tijd en geniet van de reis van het leven. Mitron, aur doston, सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे मजबूत हथियार धैर्य है और सबसे अच्छी निश्चिता विश्वास है और सबसे प्रभावी दवा हंसी के मित्रों हंसी है मित्रों। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए। अर्ध मैं द ग्रोटेस्ट रैकडोम इस wijsheid. Het sterkste wapen is geduld. De beste zekerheid is geloof. En het meest effectieve medicijn is lachen. Lachen, beste mensen. Dus blijf altijd lachen. Hamesa, hasteren, hamesa, hasteren.

भाई बहनों, विश्वास और प्रार्थना दोनों दिखाई नहीं देती, लेकिन वे नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन बना देते हैं। उस विश्वास और यकीन को मित्रों जिंदा रखें, जिंदा रखें। मैं इन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स खलूफ एंड खबैत जैन बैद ओन जिखबार मर जमाकन ओन मोहलक दिंगन मोहलक हाउ दत खलूफ एंड दी ओवर टेकिंग लीफन बेस्ट मैंसन एन खजो दो। साथियों, अगर तुम पेड़ नहीं बन सकते तो झाड़ी बनो, अगर तुम हाईवे नहीं बन सकते तो रास्ता बनो, अगर तुम सूरज नहीं बन सकते तो तारा बनो, तारा बनो, क्योंकि ये तुम्हारे साइज से नहीं है कि तुम जीते या हारते हो। मित्रों, कि तुम जीते या हारते हो, तुम जो भी हो, जो भी हो, उसमें बेस्ट बनो, अच्छा बनो मित्रों, अच्छा बनो। लिफमैन्स वेस एंड स्ट्राइक अल्स ये गेन बूम कुन जैन एंड अल्स ये गेन स्नेल वेह कुन जैन वेस दान एन पात अल्स ये गेन जोन कुन जैन वेस दान एन स्टेर वन। हेट इस नीट डोर ये ग्रोट दैट ये विन ऑफ फरलिस्ट वेस द बेस्ट इन व्हाट यू ओग मैन एंड डूट। लिफमैन्स।

भाई बहनों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं, ध्यान करिए मित्रों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं और उन्हें अपनी आत्मा में समा लेते हैं मित्रों, तो आत्मा स्वस्थ हो जाती है, खजौंत हो जाती है, मन शांत और मजबूत हो जाता है, जिसे चारों ओर अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं मित्रों, और शरीर को बहुत ताकत मिलती है, स्ट्रांग हो जाए शरीर, ताकत मिलती है लिफमेंसन फमे वनीर वो खोच खनाद एन जेखन इंगन ऐत नोलखन एन ज इन ओन जील ऑपनेमन वर्त ओन जील जोन वर्त ओन जेस्ट कालम एन स्टेरक वट लेट टॉट वेल विलेंट हेट इन ओन ज उमगेविंग एन वरक्रेगट ओन्स लिखाम इमेंस क्राख्ट वट मूई इस दिट टॉक Wat is dit toch mooi, lieve mensen. Dus ga zo door, ga zo door. Dosten, hum sabhi mein apne aur dusron ke liye shanti, sukoon ke saath saath stress paida karne ki kshamta hoti hai. Hum sabhi mein problem clear karne ke liye, mitron. Aur ye hamara nazariya hai, जो उनमें से एक को बनाता और पोषित करता है. मित्रों ध्यान करिए हम क्या बोल रहे हैं. ओलिफ मैंसन वे आलोमाल हैवन एट फरमूक ऑन ओम जो वेल रिस्ट स्टिल्ट अल स्ट्रेस द क्रिएरन फॉर ओन सेल्फ एंड फॉर अंदरन एंड हैट इस ओन जो हाउडिंग दी एन फन बेड ऑन द हाउड एंड फुट. ये हमारे में क्षमता है मित्रों. तो बुराई भी है हमारे में और अच्छाई भी है, तो इन दोनों में से हम क्या करना चाहते हैं, कौन सी लेंगे, हम कौन वाला अच्छा रहेगा मित्रों.

दोस्तों, दयालु दिल बगीचे हैं, मतलब ब्लूम टर्न है। एक दयालु दिल बगीचे यानी ब्लूम टर्न है। दयालु विचार जड़े हैं, मतलब यादें हैं मित्रों। और दयालु शब्द फल है, दयालु कर्म फल है मित्रों। बेस्ट मेंशन फ्रिंदल का हार्तन जैंद तैनन, vriendelijke gedachten zijn de wortels en vriendelijke woorden zijn de bloemen. Vriendelijke daden zijn de vruchten. Pyare pyare bachon, samajhdari wo inaam hai jo aapko zindagi bhar sunne ko milta hai. Jabki aap baat karna pasand karte the. Mitron, beste en vriendelijke mensen, wijsheid is de beloning die je krijgt voor een leven lang luisteren, terwijl je liever zelf had gepraat, maar het wordt door anderen gesproken over jou. Goed of slecht, dat ligt in jouw handen. Jab zindagi aapko tootne aur rone ke sau karan de, to zindagi ko दिखा दो मित्रों कि आपके पास मुस्कुराने और हंसने के लाखों कारण है। मित्रों, मजबूत रहो, मजबूत रहो। बेस्ट मेंशन, अल्स हेट लीफन यू 100 रीजनन गीफ्ट ओम इन टू स्टोर्टन एंड टू हुइलन, लात हेट लीफन दान जिन दैट यू अन मिलियन रीजनन हैव ओम टू लाखन en te glimlachen, lieve mensen. Dus blijf lachen en blijf sterk. Blijf lachen, blijf sterk.

0: दोस्तों, हम खुश करने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना लेते हैं भाई बहनों, लेकिन अगर हम सबके साथ खुश रहने का फैसला करें तो ज़िंदगी सच में आसान, सुकून भरी और खुशनुमा हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है। मित्रों, आर्थ मैंसन वो माकन है उन जेल्फ मुइल दोर इधर इन तो फ्रीड इन तो विलन स्टेलन मर हैथ लीफन वो पास एक्ट मकलक ऑन स्पनन एंड फ्री द फॉल आल्सो एयर फॉर किजन om met iedereen gelukkig te zijn. Wat mooi is toch dit? Wat mooi is het? Doston, samay kabhi hamara intezaar karne ke liye tayar nahi rehta. To phir hum hamesha sahi samay ka intezaar kyun karte hain? Dhyan kariye mitron, hum samay ka intezaar kyun karte rehte hain ki sahi samay aayega? सही काम करने के लिए कोई समय गलत नहीं होता है और गलत काम करने के लिए कोई समय सही नहीं होता है। मित्रों, इसे ध्यान से सुनने बाद में बहुत काम की चीज़ मैंने आपको बतलाया है। फ्रेंडन बेस्ट मैंसन द तेत वक्त नोइट ऑफ ओंस Waarom wachten wij dan altijd op het juiste moment? Er is nooit een verkeerd moment om de juiste dingen te doen. En er is nooit een goed moment om de verkeerde dingen te doen. Denk hier eens over na, beste mensen. Denk hier eens over na. Want wij zitten altijd met die gekke gedachten. Ating no boom, samay thik na hai, het is geen goede tijd.
1: Nee.
0: De tijd is altijd goed. Wij moeten weten wat we doen.

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।

गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे।

सुनने वालों, मैं हूँ आपका सेवक संजय और कुछ समय तक मैं आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। संदेश भी रखा जाएगा।

आशा रखता हूँ कि मनुष्य की पवित्रता की ओर मनुष्य की पवित्रता की ओर कुदृष्टि रखा जाएगा।

कहते हैं कि मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ अर्थात अति उत्तम सबसे श्रेष्ठ और अच्छे श्रेणी का प्राणी है। परंतु यहां एक विचारणीय बात है, क्या वास्तव में वे सर्वश्रेष्ठ है? यदि वर्तमान स्थिति का अवलोकन करें तो पाएंगे कि मनुष्य सर्वोत्तम से निम्नतम श्रेणी का बन चुका है।

कहते हैं कि वे पल प्रति पल निमंता की ओर गिरता जा रहा है, कारण कि परमात्मा ने मानव संरचना में आवश्यक अंगों का निर्माण किया है। एक एक अंग अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका एक विशेष प्रयोग होना था। आइए आइए जानिए किस प्रकार जो हमारे अंगों हैं उन्हें हमें प्रयोग करना चाहिए था।

जैसे कि संतों ने निर्माण किया है कि जैसे हमारे आँखें हमारे शरीर के अंग भी है, जिससे इस संपूर्ण जगत को देख पाते हैं। इसका मूल प्रयोजन था कि हरि दर्शन, संत का दर्शन और लौकिक अनुभवों का दर्शन। परंतु संसार में व्यक्ति ने अज्ञानवश इन नेत्रों का दुरुपयोग कर इन्हें मलिन कर दिया है। बाहरी जगत के गलत दृश्य देखकर हमारे नेत्र मलिन होते चले गए।

हमारे संतों ने क्या खूब लिखा है कि दूसरा जो ईश्वर ने हमें दो सुंदर हाथ दिया है, हाथों का प्रयोजन था कि दूसरे के हित के लिए निस्वार्थ सेवा, संतों की सेवा, दान आदि करना, परंतु नादान मनुष्य पाप की सीमा पार कर चुका है।

हाथों से वे दूसरे की हत्या तक कर डालता है। कुंकर्म करता है जिसके कारण हमारे हस्त मलिन हो गए।

हमारे तीसरे अंक तीसरा, परमात्मा ने मनुष्य को एक जिह्वा दी है। जिसका गुण था कि बोलना हमें सत विचारों, शुभ वाणी और मंत्रो उच्चारण द्वारा जिह्वा को पवित्र बनाना था, परंतु दुर्भाग्य से आज इस जिह्वा का प्रयोग दूसरों को भला बुरा कहने, अवगुणों का बखान, दोषों वे कमियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इससे समाज, परिवार और राष्ट्र में दुखों, फसाद और लड़ाई झगड़े शुरू हो गई। परिणाम स्वरूप जिह्वा मलिन हो गई।

और चौथे अंग के अंतर्गत हमारे संतों ने लिखे हैं कि परमात्मा ने मानव संरचना में ये बुद्धि प्रदान किया है, बुद्धि जिसका प्रयोजन था कि परमात्मा यानी कि उस परम तत्व के विशेष में जानना, परंतु बुद्धि का प्रयोजन हमने कांच के टुकड़ों, सोने चांदी बाहरी धातु को तराशने में किया। बाहरी जगत के जानकारी एकत्र करने के लिए किया। संसारिक विशेष्यों के बारे में जानकर बुद्धि मलिन हो गया। चलो हम एक भजन के ओर बढ़ते हैं और उसके बाद हम ये संदेश को आगे रखने की कोशिश करेंगे।

सुनने वालों, परमात्मा ने मनुष्य को दो श्रवण भी दिए हैं। श्रवणों को प्रयोग हरि चर्चा को सुनने के लिए करना था, परंतु इन श्रवणों से हम दूसरों की निंदा चुगली सुनते हैं और इन्हें मलिन कर बैठे हैं।

कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर को स्वच्छ और निर्मल रखने हेतु प्रतिदिन उसे स्नान कराना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जीवन को निर्मल बनाने के लिए भक्ति रूप जल से इसे स्नान कराना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे।

सुनो लो इस कार्यक्रम को, जो अल्मेरा शहर से पंडित राजन जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उनके ओर से ये संदेश भी रखा जाता है कि शिक्षा अकेला ना कर पाएगी, मानव का उद्वार दीक्षित होकर करना होगा, विकारों का संहार।

और आगे कहते हैं कि घंघोर है हो चुकी निशा की तमस की छाई है दुर्भावों की हर कन में उमसी क्षरण करो अज्ञानता का ले धर्म का आधार दीक्षित होकर करना होगा विकारों का संहार।

भौतिकता की डोर में अध्यात्मा है लुप्त हुआ, मानवता का मरम ही हर हृदय में सुप्त हुआ। व्यक्ति नहीं किया कभी प्रतिपालक का आभार, दीक्षित होकर करना होगा विकारों का संहार।

सुनने वालों, जैसे कि हमारे कार्यक्रम को सुनने वाले हैं इस तनहा शहर से श्रीमती विमला जी, जो अपना बचपन का संदेश भी अभी रखे और कह रहे थे कि ब्लूमंदाल के निवासी क्रोबिया स्त्रात में जन्म से और वहाँ अपने भाइयों बहनों माता पिता के साथ रहते और आज 50 साल से भी ज़्यादा के बाद सोच करके इस संदेश को रखते हैं कि जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही कोई दुश्मन, वे तो हमारे घमंड और ताकत या व्यवहार से बनते हैं। ये सुंदर सा संदेश उनके ओर से रखा गया और कहते हैं कि जिंदगी को अगर खोल करके जीना है तो थोड़ा सा झुक करके जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देंगे।

जो संदेश रखा गया, और हमारे एक और संदेश जो यूएफ वैष्णवी जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उनके ओर से ये संदेश रखा जा रहा है, पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। यूएफ वैष्णवी के ओर से ये सुंदर सा संदेश। जो सैफन हाउस के निवासी

दोस्तों, अगर हम देखें तो एक और संदेश आए हैं डनहाग फिशरस्ट्रैट से श्रीमती मराइका जी, उनके ओर से ये संदेश हमें और सुनने को प्राप्त होगा कि कोई लिखा हुआ दस्तीज नहीं है, इसे तो रोज रोज स्वयं ही लिखना पड़ता है।

सुनने वालों, ये इस कार्यक्रम को लेलीस्तात शहर में श्रीमती अहिल्या जी भी सुनते हैं और उनके ओर से उन्हें भी कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। कुछ संदेशों भी उनके ओर से और रखा जा रहा है। संदेश में ये संदेश है कि अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से युद्ध नहीं जीत सकता। यदि मैं युद्ध नहीं करता तो आने वाले पीढ़ियां मुझे कायर कहती, क्योंकि नारी का अपहरण होता रहा और तुम चुप कर बैठे रहे। धर्म मिटने का है धर्म रक्षा के लिए। अगर राम नहीं बन सकते तो कम से कम जटायु तो बनो।

और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि शब्द का भी तापमान होता है। कहते हैं कि शब्द जो कि तापमान कभी गर्मी हो जाता है, ये सुकून भी देता है और जला भी देता है। तो आपको एक शुभ दिन प्रस्तुत करते हुए और इस पे आप जरूर ध्यान देना। कहते हैं कि शब्द का भी तापमान होता है। ये सुकून भी देता है और जला भी देता है। और आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से, इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में इसको सुना जा सकता है। और जो अभी चुन किए हैं फाहुन पे, तो उसे हार्दिक से अभिनंदन।

रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हार्दिक से नमस्कार करता हूँ। सुनने वालों, ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और यहाँ से औख्तन भजन प्रोग्राम में मैं आपके साथ जुड़ गए हैं। जो छुट्टी मनाने के लिए हमारे देश में आए हैं उनको बहुत से स्वागत किया जाता है। हमारे देश हॉलैंड जो जिसमें चार ऋतुएं हैं, विंटर, विंटर के बाद में आ जाता है लंत, फिर सोमर आ जाता है और सोमर के बाद में फिर हरफ्स आ जाता है, और जब ठंडी का समय होता है तो एक देश जो फूलों से भरे हुए है और पेड़ों तथा सभी वृक्षों जिसमें पत्ता नहीं होते हैं, पर एक ऐसा देश है जहां पर आपके लिए बहुत सा व्यवस्था किया गया है। Unlocked met de meeste musea's misschien. दुनिया के हर एक अवलोक आते हैं हॉलैंड का दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि ये देश में 631 सौंदर्यदर्शक म्यूजियम से Unlocked vol met geschiedenis en kunst.

Canada, Toronto of Nederland. Amsterdam Nebel Palace voor uw hypotheken en financieringen. Agar aapko malumat karna hai, to 06-2513-6374. ये कहावत है कि जीवन को उस तालाब की तरह बनाओ जहां शेर भी पानी पिए और बकरी भी पानी पिए लेकिन सिर झुका के। तो हमारे अगला भजन जो हम रखने वाले हैं, डनहाग फोर पार्क लाइट्स गवेन आनंद शर्मा ग्रोथ हैंडल बेफे। आनंद अर्जुन शर्मा जी से आप जरूर मालूमात कीजिए 06-55-73-2867 से। उनके ओर से ये सुंदर सा भजन जो इस समय प्लेयर पे चुन करके हमने रखे हैं।

तुम अपने रंग में माँ दुर्गे। Den Haag voor het park Leidseveen. Anand Sharma, Groothandel BV. Jinka Tarka nummer 06557328 67 hai. Groothandel ke koi bhi aav saman aapko zarurat hai to zarur bhai Anand Sharma se malumat kijiye. कहते हैं कि छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने की सहारा बनती है, इच्छाओं का क्या वो तो पल पल बदलती है।

अगला स्पॉन्सर किया गया और भजन जो भी दना फोरक पारक लाइट सफेन सुंदा खुरुंतन एंड फ्रॉइट जिनका मालिक श्रीमान परशुराम मोहनलाल जी है, जिनका तार का नंबर 0622795862 है, उनके ओर से ये सुंदर सा भजन

जब भी कोई काम कीजिए तब माता रानी का ध्यान धरिए। और ये सुंदर सा भजन जो हमारे लिए स्पॉन्सर किया गया है ख्रोत हांदल जो लाइसफेन फोर पारक दनहाक्षे शुंदा खुरुंतन फ्राइट जिनका मालिक श्रीमान परशुराम मोहलाल जी है जिनका तार का नंबर 2279586 2 है।

सुन वालो, अगला जो हमारा स्पॉन्सर किया भजन है, फोर पार्क दनहाग शहर लाइट्सफेन डीएचआर बाउ एंड ऑनरहाउस बद्रेव, जिनका मालिक श्रीमान देवनारायण हरिदत्त रोहित जी है, जिनका तार का नंबर 9626072241 है। उनके ओर से ये सुंदर सा सरस्वती माता का भजन जो हम आपके लिए प्लेयर पे रख देते हैं।

वीणा वादनी ज्ञान की देवी, ये सुंदर सा भजन जो हमारे स्पॉन्सर किया गया प्रोग्राम जो श्रीमान देव नारायण हरिदत्त रोहित जी ने जो DHR बाउ एंड ऑन द रोड्स बदरेव का मालिक है, जिनका तार का नंबर 0626 0741, अगर आपको कोई प्रकार के ऑनरहाउस वर्कशॉप हेदन के बारे में प्रश्न करना है तो देन हाग शहर 4 पार्क लाइट्सफेन से श्रीमान हरिदत्त रोहित जी को जरूर और मालूमात कीजिए।

दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है।

ये सुंदर सा भजन जो देनहाग मैकेन स्ट्रात 6 हिंदू बासस्कूल फाहुन फरेनिगिंग अलगमेने हिंदू ओंडरवाइज नीदरलैंड के ओर से रखा गया। और सुनने वालों, अगला भजन के ओर हम बढ़ने वाले हैं, पर इस ओर बढ़ने से पहले जरूर इस बात को जिक्र करना चाहूँगा कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले में पेन इसीलिए दिया जाता है ताकि हम समझ जाए कि हमारी गलतियां को मिटाना अब आसान नहीं है। अगला जो हम भजन जो हम चुन करके रखे हुए हैं वो है सुरिनाम लिफोर्नो मेनकंदम हुक इंदिरा गांधी वेग श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर, जिनका सभापति श्रीमान सुभाष महावीर जी है, जिनका तार का नंबर है 00597867577। हम उनके ओर से ये सुंदर सा भजन आपके लिए रखने वाले हैं।

क्या खूब फरमाए हैं बॉलीवुड लेटेस्ट सॉन्ग्स के साथ। मैं हूँ आपका सेवक संजय और कुछ ऐसा नया नया गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप सुन रहे हैं फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है।

दोस्तों, कहा जाता है कि सुख चाहते हो तो रात में जगाना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। बात के लिए मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। कुछ बॉलीवुड न्यू सॉन्ग्स के साथ

फिल्म साहिबा से निकाला गया। ये फिल्म जो 2025 का सॉन्ग्स में बिलोंग होता है और बॉलीवुड में जो हर साल में लगभग 2000 फिल्मों बनाया जाता है, जब देखा जाए कि 2017 में कहा जाता है कि इंडिया से सिनेमा 1986 स्पेलफिल्म्स जो बनाए थे, वारफन हेत ग्रोटस्टा आंतल 364 इन हेत हिंदी वास,

तू से निकाला गया। ये सुंदर सा गीत जो बॉलीवुड 2025 के सॉन्ग लिस्ट में बिलोंग होते हैं।

खेल खेल फिल्म का नाम और दलजीत के आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। दलजीत जो एक पंजाबी सिंगर

2024 में अपना कॉन्सर्ट एम्स्टर्डम डोम में भी दिया। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि आप अपना दिन इतना सुंदर बनाइए, इतना खुश रहो कि दुनिया वाले भी परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है।

0: 2025 में रिलीज हुए ये फिल्म सुनने वालों, हमारे देश में भी कुछ पुरानी फिल्मों जो चलाया जाता है गर्मी महीना में और बायोस्कोप में, तो कुछ फिल्मों के नाम अभी मैं आपके साथ जरूर जिक्र करेंगे बायोस्कोप में। और जैसे पुरानी फिल्मों के नाम मैं जिक्र करता हूं तो शोले, सिलसिला, इस प्रकार की फिल्मों, खास करके इस साल सूरीनाम में भी ऐसा कुछ किया जाए। तो अगर आपके मन में भी ऐसा फिल्म फेस्टिवल देखने का इच्छा है के पास इंटरनेट है तो जरूर गूगल महाराज पे और सर्च कीजिए कि इस साल कौन कौन सा फिल्म आपके लिए रखा जाएगा। क्योंकि हमारे देश में ऐसा और प्रोग्राम को बनाया जाता है और इसी तरह से सूरीनाम में भी अगर आप वेकेशन से गए होंगे तो गर्मी महीना में हर साल की तरह इस साल भी कुछ कार्यक्रम को रखा जाएगा।
1: यीशु के बगैर ये शंभू,

0: राज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं।
1: क्योंकि सखी इस महल में नहीं अपने श्री के मन में रहती है।
2: अरिजीत सिंह जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। एक फिल्म जो रिलीज हुआ 2025 में, विकी कौशिक जी ने अपना कला से अभिनय किया।

सुनने वालों, ये भी एक गीत निकाला गया 2025 फिल्मों में से। समय के ओर जब देखा जाए कि किस ओर बॉलीवुड भी जा रहे हैं, और कहा जाता है कि 2024 में काफी बड़े बड़े फिल्मों निकले।

समय से सब कुछ मिलता है, समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत और दुख का कारण बनती है। एक और बॉलीवुड का प्लेलिस्ट 2025 के और हम बढ़ेंगे।

हाउसफुल 5 से निकाला गया ये सुंदर सा गीत कॉमेडी फिल्म जिसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, फर्नांडिस, ढेर सारे फिल्म एक्टर्स इस फिल्म में अपना अभिनय दिए हैं। दोस्तों, शायद आपने कभी ये प्रश्न नहीं किए होंगे, पर यहाँ जब देखा जाए कि बॉलीवुड एक ऐसा बड़का फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें कहा गया है कि लगभग एक फिल्म में 4 गीतों के साथ मिनिमम रखा जाता है, और हम जब गिनती में देखें कि 500-600 फिल्म तो साल में बनी जाते हैं, उसे जब हम 4 से जोड़े तो लगभग 2400 गीतों का तैयारी हो जाता है साल भर में। और उसे हम जब आगे जोड़े लगभग 15 साल से तो 36,000 सॉन्ग्स हो जाते हैं।

2025 में से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। द फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्डेड इन इंडिया बाय गौहर जैन इन 1902। गीत जो रिकॉर्ड किया गया 1902 में। एंड द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म अलम आरा 1931।

शायद इस बात को भी आप जानते होंगे। उस समय के बाद जो हमारे समय आते थे, इन द यारे 60, द यारे 70, द यारे 80 en 90, जिस समय कैसेट टेप्स के समय कहा जाता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तो बस 2000 से शुरू हुआ। सैदी के बाद

खुश हो, अच्छे बात है। आपकी वजह से कोई खुश हो, ये सबसे अच्छी बात है।

दोस्तों सॉरी बोलने में कंजूसी मत करना। कोई कभी ऐसा होता है। ऐसा होता है कि अपना हार मानने को नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 70 साल से भी ज्यादा होने पे एक दूसरे से और बिखर जाते हैं। बस यही कि सॉरी कहना नहीं आता है। तो दोस्तों सुनो वालों, इसमें कंजूसी ना करे। यहां तक था मैं आपका सेवक संजय। कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स 2025 के लेकर, शायद हमारे समय का नहीं हो, पर हम इसी समय में जी रहे हैं। Wish you a very good

इंतजार, किसी लड़की ने दिल मेरा छीना, आओ मैं बताऊं। गाने वाले हैं अभिजीत एन पूर्णिमा, इस वंडरफुल सॉन्ग हिंदुस्तानी रेडियो की प्रोग्राम उड़ी उड़ी थी इत्तफाक से, और जुड़ी जुड़ी उड़ी उड़ी है उड़ी

इत्तफाक से उड़ी उड़ी शिल्पा राव से भी आप सुन रहे थे। कुमार शानू साथ में अलका याग्निक। गाने जब मैंने सुना तो मैंने सोच लिया ये गाने आपके दिल पे टच करेंगे, आपके दिल को टच करेंगे, क्योंकि गाने के साथ साथ आप बहते बहते कहीं किसी के दिल के पास आप जा पहुंचेंगे। ये दिल ये पागल ये दिल मेरा हर पल तुझे आवाज दे, प्यार भरा गीत है, चलो आपके दिल में हम धंसा देंगे।

हिंदुस्तानी रेडियो की प्रोग्राम मुझसे नाराज हो तो हो जाओ, खुद से लेकिन खफा खफा ना रहो।

0: और जबकि मुझसे नाराज हो तो वो जाओ। और इस तरह से ये सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे हजारों का दिल चुराने वाला हिंदुस्तानी रेडियो का प्रोग्राम आप सुनते हैं।
1: अजीब इत्तफाक है,
0: क्या अजीब इत्तफाक है, क्या मुलाकात है यार। डोंट से अलविदा गाने वाले हैं सोनू निगम।

ना कहो अजीब इत्तफाक है, क्या मुलाकात है यार, वो भी हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से प्रोग्राम आप सुनते हैं डीजे के साथ। एक गीत है, ये गीत आपके दिल के कोने में कहीं पर भटक रहे हैं। मेरी दुनिया में आना न जाना।

फिर यार मजाले, चलो इसी दौरान में गीत तो हम लगा चुके हैं और अपने सोफा पर बैठे होंगे या तो लेटे होंगे, पता नहीं आपके दिल में क्या क्या उमंगे खिल रही है। आइए गीत हम लगा चुके हैं, गाने का बोल है दुनिया नजारे ना गुलो का खिलना, अच्छा लगता है बस तुमसे मिलना। मौसम के हालत देखते हुए ये गीत आप दोनों के लिए पेश किया जा रहा है, कुमार शानू अलका याग्निक, मस्ती भरी सॉन्ग। चाहे रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम, यही गाने तो अच्छा लगता है सुनने में।

अरे नेफर यार, मैं कभी नहीं सताऊंगा, एंड ऑफ कोर्स यार जरूर से मिलूंगा। और जितर से प्यार भरा गीत जो आपके सेवा में पेश किया गया है हिंदुस्तानी रेडियो की जरिए से, आइए गाने की तरफ हम बढ़ चुके हैं। और इस बार आप सुनेंगे, अरे अरे अरे अरे प्यार में होता है क्या जादू। समझ गया, आप भी समझ जाएंगे गाने सुनेंगे तो। तू जाने या मैं जानू, लगता यूं ही है कि दोनों तरफ से घायल ही घायल है। प्यार के आग ही तो

अरे तू जाने या मैं जानू, दुनिया में होता है क्या जादू। रब्बा है रब्बा, लो टूटे कच्चे धागे, राहत है फतेह अली।

हेलो टूटे कांचे धागे और राहत फतेह अली खान से अभी आपने सुना हिंदुस्तानी रेडियो की प्रोग्राम फूलों के शहर में कांटों से डरने लगे। और जब प्यार के कांटे चुभ जाते हैं दिलों पे तो फिर

हम प्यार करने लगे, फूलों की शहर में कांटों से डरने लगे। लता जी अभिजीत के साथ में ये सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। KKN अलका याग्निक, हे ये फिजाए जिंदगी है हंसी और जवा, झूम लो यार बैठे बैठे या फिर हिलते रहो डोलते रहो, गाने सुनते

0: अफवाह हिंदुस्तानी रेडियो की प्रोग्राम सुनिए कहिए किशोर कुमार है प्रोग्राम में।
1: सुनिए
2: कहिए

0: muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Bij een bedrijf in Schiedam is vanochtend een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. De chauffeur kwam tijdens het laden aan lossen bekneld te zitten. De hulpdiensten waren er snel bij om eerst hulp te verlenen, maar dat kon niet meer baten. Het slachtoffer is ter plekke overleden. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart. Vakbond FNV gaat de eerste twee weken van september op verschillende plekken actie voeren. FNV-voorzitter Hans Spekman kondigde aan dat er waarschijnlijk ook een staking van 24 uur op het spoor komt, waardoor er een dag lang geen treinen rijden. De bond protesteert hiermee tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het kabinet wil namelijk de uitkeringen voor mensen die langdurig ziek of werkloos zijn korter maken. Er woedt een grote bosbrand in het Duitse Müritz Nationaal Park. Dat ligt in het noordoosten van het land. Dat meldt de Duitse RTL. Helikopters met bluswater vliegen boven het park dat jaarlijks een 500.000 bezoekers trekt. Er werd al 300 hectare aan natuur getroffen en dat kan je vergelijken met de oppervlakte van Central Park in New York. En Vitesse mag voorlopig in het betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de club vorig jaar door de rechter terecht weer is toegelaten. De voetbalbond KNVB had de licentie van Vitesse eerder afgepakt omdat de club de regels zou hebben omzeild. Er loopt nog wel een grote rechtszaak tussen de club en de KNVB, maar de uitspraak daarvan duurt nog lang. Vitesse hoeft zich dus voorlopig geen zorgen te maken en mag het komende seizoen in de eerste divisie sowieso afmaken. Het weer nog, het wordt vanmiddag opnieuw een warme dag met temperaturen tussen 23 en 28 graden. Er is veel zon, al komen er in het binnenland ook wat stapelwolken voor. In het noordoosten en oosten kan lokaal een bui vallen. De komende dagen koelt het af. Zondag en begin volgende week wordt het overdag niet warmer dan 19 tot 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
4: Ja, dosto, hari ko hamara ram ram, namaskar, adai barzu. Lo main aa gaya, main hu aapki khidmat mein. अनिल जारजू जो कुछ दिन नहीं थे फ्रांसिस थे सूरीनाम में थे और आने के बाद थोड़ा से वेर के वेर फरांदरिंग से थोड़ा से खरीप रहा और अब तो मैं बढ़िया हो गया हूँ आपके खिदमत में मैं हूँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे वहाँ तक हमारा प्यार पहुँचे दुलार पहुँचे और पैगाम भी पहुँचे आज शुक्रवार है और घड़ी की तरफ देखा जाए तो 11 का वक्त है एन फोर एल फॉर प्रोग्राम को हम चलाएंगे 3 बजे तक हमारा और तुम्हारा साथ रहेगा सबसे पहले हम हर एक को सलाम दुआ करते हैं जो हमारा पूरा टीम है कुलेखा है द एफगिल फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से हर एक को हम सलाम करते हैं राम राम कहते हैं और अदाए बर्स कहते हैं हर एक जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं एक बार फिर से हमारा तुम्हारा साथ है हमारा तुम्हारा साथ रहेगा हर दिल से ये नाता है हर दिल से एक रिश्ता बन चुका है आज कुछ ऐप्स होंगे कुछ बातें होंगे और कुछ प्यारे प्यारे गाने भी होंगे तो लो मैं आ गया काफ़ी वक्त मैं तो नहीं लूँगा तो इसलिए मैंने कहा ना लो मैं आ गया घबराना मत हम नहीं हैं तो हमारा कोलेखा थे रेडियो आप लोगन जोर तोर से सुना है, दो महीने दो आधा महीने आज से मैं आ गया हूँ, लो मैं आ गया हूँ। चलो दोस्तों कुछ हंगामा हो जाए आज, और ऐप पे भी हम बात करेंगे, ऐप से हम आप लोग से ज़रूर बात करेंगे, तार का नंबर देंगे। एक सवाल मैंने किया था सुरीनाम जाने से पहले, एक घंटे के बाद सवाल का जवाब मुझे ऐप द्वारा चाहिए, जो सही जवाब को देगा। हमेशा की तरह आप मांग सकते हैं एक गाना, और हक बनता है अगर सही जवाब है। आप सब जानते हैं मेरा सवाल था बनान इसनर हर्ष अर्स खान वारोम। एक बकवा अपना दत्ता के पास गया था, घर के दत्ता कहते उसे ना, हर्ष अर्स, क्यों गया था, किस लिए गया था, मेरा सवाल था बनान इसनर हर्ष अर्स खान एनवारोम। ठीक है दोस्तों, हम लगाते हैं कुछ गाने ऐसे ऐसे ही कि लो मैं आ गया, डर मत मैं तो आ गया हूँ यार। चलो मिलके सुनते हैं, आप सब चुन है बुरकाश हो रहा है द एफगिन लव द लव फॉन हिंदुस्तानी रेडियो दिनांक शहर से रहा है, और जहाँ पे इस वक्त देखते हैं लोग कितने काफ़ी लोग जो कटिया लगा रहा है, स्नूक बार्स पकड़ रहा है, सरसरात हवा की तरफ, ये पानी के बगल में हम लोग है, हमारा स्टूडियो दिनांक शहर से हम सब बात करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, बचना ए हसीनो, अनिल सार्जुन तो आ गया है। यही बात है दोस्तों, हर एक को एक बार फिर से हमारा राम राम नमस्कार। और हम बढ़ते ही क्या अच्छे अच्छे गाने में आप लोग के लिए, थोड़ा चलता गाना मैं आपने आप सबके लिए खोज के रखा है कि थोड़ा फ्रेश दाखे, थोड़ा फ्रोल का गाना हो जाएगा आज। अभी जो आप लोग मांगेंगे मुझसे सही जवाब में, तब चलेगा। जो भी आप मांगेंगे वही गीत हम आप लोग सुनाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं दफली वाले न्यू स्टाइल में।

जी हाँ, सुनने वालों, कहते हैं जहाँ भी है, जिस हाल में भी है, जो भी आप करते हैं सब कुछ करो, लेकिन दफली को बजना चाहिए, क्योंकि दफली पे हम सबको नाचना है ना, इसलिए दफली को बजना चाहिए। दफली वाले रिमिक्स ऑल हिंदी गोल्स सॉन्ग से, और जहाँ पे रिमिक्स कर दिया गया है, और क्या अच्छा रिमिक्स बनाया है, न्यू स्टाइल में चलते हैं। सुखवार है, सुख हो चुका है, वीकेंड आ चुका है, तो थोड़ा रिमिक्स को हम चलाएंगे।

सच में कहता हूँ हमको भी आपसे मोहब्बत हो गई है। डू यू नो, आपको फीलिंग है, आपको जानते हैं कि हमको भी आपसे मोहब्बत हो गई है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, चलते हैं आगे। क्या गाना है,

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भड़कती हुई रीमिक्स जो कर दिया गया है मैंने प्यार क्यों किया है। जी हाँ दोस्तों, घड़ी की तरफ देखा जाए तो 12:00 हो चुका है और हम प्रोग्राम को चलाते हैं। आप सब सुनते हैं, काफ़ी लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। अभी हम ऐप से ज़रूर आपसे बात करेंगे। आप मुझे आपसे देखा जाए 1 घंटे बाद ऐप कर सकते हैं, सवाल पे जवाब दे सकते हैं और गाना भी मांग सकते हैं। तब तक के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग, जो भी कराना है या एक फरमाइश दिवाना है या कुछ रखलामा बनवाना है, रखलामा करवाना है, आइए प्यार से आइए। हमारा स्टूडियो तो मानदाह तो फ्राइडा के खुला है, 9 बजे सुबह से लेकर 5 बजे तक खुला है। और स्टूडियो का नंबर है 07 3 6 2 20 7 7 7 7। और भूल मत जाना हम सब चून है द एवरग्रीन लव, द लव वाहन हिंदुस्तानी रेडियो से जो दनहक शहर से जुड़ा है। और नामस रेडियो फाहन अल लेद अल कोलीखास आप सब के लिए

द मूवी ओम शांति ओम का निकाला हुआ गाना धूम ताना धूम, जिसमें शाहरुख खान और दीपिका ने काम किया है। तो ऐसे चलते हैं दोस्तों, हम चलते हैं आगे, और क्या गाना है यार, चलो मिलके सुनते हैं जुगनू सा दिल।

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे जुनून सा दिल। ठीक है दोस्तों, भी आप सुन रहे थे, प्रोग्राम चल रहा है और जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। मेरे मुझे ऐप आया है, काफ़ी ऐप आ चुका है, लेकिन थोड़ा सी अगोरिए और हम आप सबके जो फरमाइश से सही जवाब पे मैं ज़रूर आपको गाना ज़रूर आपके कानों तक पहुँचाएंगे, और जो जो सही जवाब दे गया, अगर सही भी नहीं है तो भी मैं तो जाने हम तने से चोरी कर बैठे तो लोग खतिन तो भी हम गाना ट्राई कर, क्योंकि अगर आप हमारे संगे बांटे तो हम आपके साथ जरूर है, पूरा टीम हमारा जो है आप सबके साथ है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए चलते हैं कुछ झुनमुन करें। झुनमुन के मतलब जानते हैं आप ना, झुनमुन करेंगे, झुनमुन कुछ नाच करेंगे, कुछ हंगामा करेंगे।

जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कसम से मैं कोयला हो गया हूँ। ठीक है दोस्तों, हम एक सवाल फिर से कहते हैं जिसका सवाल का जो जवाब मैं तुरंत आपको दूंगा। ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे काफ़ी चुनमुन हो रहा है? मैंने भी कहा था चुनमुन चुनमुन क्या है, काफ़ी डांस हो रहा है कि हिल हिल के नाचते हैं, एक एक एक एक देही का एक एक टुकड़ा हिल रहा है। कहाँ पे काफ़ी दुनिया भर से काफ़ी चुनमुन हो रहा है? तो वो है लक्ष्मी नगर। हम आप लोग को ले चलते हैं लक्ष्मी नगर में, जहाँ पे लड़की बस साले बबुआ इस पे काफ़ी चुनमुन हुआ है। और यहाँ लिखा भी है एक ही शहर है, एक ही गांव है या शहर है, लक्ष्मी नगर में काफ़ी चुनमुन हो रहा है। चलो हम देखते हैं और हम देखेंगे, आप लोग सुनेंगे। चलो हम सुनते हैं, आप सुनते हैं, हम देखते हैं कि कैसा चुनमुन है ये। जी हाँ दोस्तों, ये चुनमुन तो मैं देख रहा हूँ काफी हिल हिल के उड़ उड़ के कूद कूद के चुनमुन कर रहा है। चलो चलो चलो, घर पे भी आप चुनमुन कर सकते हैं इस गाने पे।

0: दारू अरे दारू अरे दारू रे,
1: नशा भंग का तूने चराया पी ली तुमने दारू, प्यार से तुम पे दिल मांगेगी अब तोरी मेहरारू
0: मेहरारू, अरे तो ही लगाई।

लड़की फंसा ले बबुआ, कहीं मौका निकल ना जाए। ये सब गाना आपको सुनने के मिलते हैं सिर्फ द एफगिन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से। हम सब लड़के पटा चुके हैं बबुआ, मैं भी पटा चुका हूँ, आप भी पटा चुके हैं, और जो अभी नहीं पटाया है अभी मौका है। धड़का धड़का सॉन्ग्स, चलो इस सॉन्ग्स को सुन के आप जरूर पटाएंगे लड़की बबुआ।

0: जी हाँ दोस्तों, मुझे बुलाए रे जो लड़की नहीं पटाया था, इस गाने को सुन के लड़की पटा सकते हैं, सीटी भी बजा सकते हैं। और क्या खूबी है इसमें यार, क्या दिल इतना खुश हो जाते हैं अगर आप लड़की पटाते और लड़की पट जाती है तो क्या बात है। मैंने कहा था ना, जो नहीं पटाया इस गाने को सुन के धड़क धड़क कहता है दिल, सीटी बजाते हैं दिल और लड़की पटता है। ठीक है दोस्तों, इतना इस गाने को सुन के लड़के पटा के इतना न मुझसे प्यार करो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप जानते हैं तो प्रोग्राम चलते ही अब कुछ न्यूज़ आएगी और कुछ बयान भी आएंगे। और देखा जाए तो द्री क्वार्टर के बाद आप लोग मुझे ऐप कर सकते हैं, बताएंगे ऐप कब खुलेंगे। लोग ऐप करते हैं लेकिन ऐप खुलेंगे अब से लेकर क्वार्टर फोर ट्वेल्व एक बजे से हमारा ऐप खुलेंगे, आप सब ऐप कर सकते हैं। एक बार फिर से हम सवाल को करते हैं कि तो लोगन मोई से सुनिए और मोई से एक अंतर सोच के दिए, क्योंकि जोक्स फराक है, जोकिंग, दिस इज जोकिंग, आप समझे ना जोक क्या है। या इस अपसा ना जोक तो जिस तमाम जोक फराक बनान इस नारे थाइस अर्थ खान एगो बाना एगो बकवा अपन गैले दत्तरा कह खत गैले दत्तरा क्यों गया है दत्तर के पास, इसका जवाब चाहिए। और जो जवाब देगा आप जानते हैं इसका जो इस एकर कौनची इनहाउत बा जयकर अंतोर्त मोह दिए तब। और आज सुख है शायद कोई गलत अंतोर दे दे तो हम पांच अमरी के बीच में ताक देवे, जाने था दसो ना बोले मैं पांच अमरी के बीच में से हम ताकबे तो हम गाना जरूर ट्राई कर बे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हम चलते हैं कुछ न्यूज और कुछ रेखलाम के ओर।
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: De vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapte. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. Bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham zijn rond middernacht twee mensen overleden. Een personenauto kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht. Op de plaats van het ongeluk wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. De slachtoffers zijn een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Hari kaam ke liye, har advertensi ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07-365-2247। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Muziek en informatie.
0: Ja, dus we hebben zo'n rete hamara studio ka open tijden. Aur kya kya hai agar aap kuch kaam karna chahte hai, to aaiye call kijiye हमारा स्टूडियो में आ सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। जहाँ दोस्तों मैंने कहा था कि आप लड़की पटा ले बबुआ, वहाँ से कहानी शुरू होता चुनमुन करने के लिए, कौन सा शहर में ज़्यादा चुनमुन हो रहा है। तो वो और कहीं नहीं, लक्ष्मी नगर में काफ़ी चुनमुन हो रहा है। और मैंने कहा था जो भी लड़की नहीं पटाया है, गाने को सुनकर धड़के धड़का और लड़की पसा तक से है। उसके बाद इतना न मुझसे प्यार, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा। चलो हम सुनते हैं, प्रोग्राम तो सोविजो आगे जाएगी क्योंकि हम सब चून हैं। द एवरग्रीन लव फॉर हिंदुस्तानी रेडियो पे।

जी हाँ प्यारे सुनने वालों, जी हाँ हमारे प्यारे सुनने वालों, भैया आप तो सुन रहे थे इतना ना मुझसे प्यार करो। और मैंने कहा था ना कि कहाँ पे ज़्यादा रुमझुम होता है, तो वो है लक्ष्मी नजर में। तो चलते हैं प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे और देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा कलाकार है जो इस गाने को गाया है। हम उसका नाम नहीं बताएंगे, हम सोचते हैं कि आप ज़रूर जानते हैं। एक नया कलाकार है जो पुराने गाने को नए ढंग से गाते हैं, नए स्टाइल में गाते हैं। और क्या आवाज़ है, क्या गाना है, चलो सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, ये कलाकार जो इस गाने को गाया है, क्या कला है और क्या आवाज़ है, शेख तनवीर है जो इसका नाम है, शेख तनवीर। और इसे जो कंपोजर किया गया है, इसका म्यूजिक जो बजाया है वो है अजय प्रताप। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। घड़ी की तरफ देखा जाए तो 12:08 पास है। एक बेर से हम आप लोग के फरमाइशें, अरे आप लोग के पूरा करेंगे जो सही जवाब को देंगे।

जी हाँ दोस्तों, डेजर्ट मीट्स द ओशन, ये गाना शकीरा ने गाया है। ये नया गाना है 2024 में, डेजर्ट मीट्स द ओशन, और आर रहमान ने इसे हिंदी में गाया है और कुछ इंग्लिश में इसका जो गायिका है मिल के गाया है। लेकिन ये गाना देखने वाला है, इस क्लिप को देखने वाला, क्योंकि जकीरा इसमें भी है और आर रहमान भी है, और ये 2026 का नया गाना है। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे, आपको बढ़ाते हैं, ले चलते हैं, चल न्यू सिस्टम में। ये वादिया ये फिजाए एक न्यू रिमिक्स बनाया गया है और हम सब मिलके सुनेंगे, क्योंकि आज शुक्रवार है। घड़ी की तरफ देखा जाए तो क्वत ओवर 12 हो चुका है। आप जानते हैं हमारा तुम्हारा साथ रहेंगे, 3 बजे तक रहेंगे हमारा तुम्हारा साथ, और अभी 1 बजे से हम आप लोग के फरमाइश से ज़रूर सुनाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी जवाब आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, ऐसे हम बढ़ेंगे, आप है तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं, और उसके बीच में है द एवरग्रीन लव, द लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे हम सब बुरकार से हम सब चुने हैं।

क्या गाना, क्या आवाज इसके, इस गाने को सच में तो पद्मा श्री मोहम्मद रफी ने गाया है और ना इस न्यू स्टाइल में ये देखा जाए तो। अभी मैं आप इसका नाम नहीं बताऊंगा लेकिन ऑल सिस्टम में ये पद्मा श्री मोहम्मद रफी के गाना है दोस्तों, गीत है। और क्या ये न्यू सिस्टम में क्या आवाज़ है और क्या अंदाज से ये गाने को गाया गया है। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं उषा उथुप के गाने को, हम आप लोग के सुनाएंगे उथुप, उषा उथुप के कुछ आवाज़ है, कुछ ऐसे अंदाज में ये गाना गाया है, हम आप लोग को सुनाते हैं। लंबादा, लंबादा के ये गाया है। और जो भी है, हमने कहा था कि कहाँ पे कौन कौन शहर में लक्ष्मी नगर में कितना उधम मचा है नाच में, और चलो हम देखना चाहते हैं कि आप लोग घर पे भी नाचने को नाचना जानते हैं, नाच करते हैं या ना ही नहीं। जो भी इस प्रोग्राम को सुनते हैं प्यार से नाचिए, प्यार से हिलिए। अब घर पे प्रोग्राम को सुनते हैं तो नाचते रहना, कुछ चुनमुन करना, नाच को कहते हैं चुनमुन। दूसरा नाम लक्ष्मी नगर में नाच का है चुनमुन। आप चुनमुन करते रहे ना, हम आप लोग को चुनमुन कराते हैं, अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं जिन पे आप प्यार से घर से घर पे चुनमुन कर सकते हैं। अगर आप प्याज काटते हैं, मर्चा काटते हैं, या खाने को पकाते हैं, या डोक्से को चला रहा है, तो ठल्ले ठल्ले आप चुनमुन कीजिए और प्रोग्राम को सुनिए।

आप सुन रहे थे उषा उथुप, कहते ही सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। सच में तो कहा है, इतना चुनमुन हुआ इस गाने पे, चुनमुनी हो चुका इस गाने पे। और कहते हैं सोचना जो भी होगा देखा जाएगा। इस गाने जो मैं आप लोग को सुनाने वाले हूँ, इस पे भी चुनमुन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टाइल पे चुनमुन करेंगे हम इस पे।

जी हाँ, हमारे प्यारे सुनने वालों, क्या आवाज़ में, क्या अंदाज में गाया गया है, तुझको मेरा प्यार पुकारे आजा, तुझको मेरा प्यार पुकारे। ओरिजिनल है गा महेंद्र कपूर के गाना, लेकिन अंदाज में गाया है, क्या आवाज़ में गाया है। तो चलो हम आप लोग के विन से ले चलते हैं उषा उथुम के आवाज़ में। दोस्तों हम सुनेंगे क्या आवाज़ है उषा के और क्या गाना गाते हैं यार। चलो ढंग में, स्टाइल में गाने को गाया है, कितने गाने को गाया है, और इस गाने को हम आप लोग ज़रूर सुनाने चाहता है, क्योंकि कम लोग हैं जो इस गाने को सुना है, और हम इस गाने को पहली बार सुनते हैं। और क्या अंदाज में गाया है, कुछ इंग्लिश में है और कुछ हिंदी में है।

जी दोस्तों, भी आप सुन रहे थे उषा उथुप के आवाज में, और ये सब गाने जो मैं इस वक्त आप लोग को सुना रहा हूँ ये उसका नया गाना है, 2026 का गाना है दोस्तों। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तुम अगर साथ देने का वादा करो, ये भी 2026 के न्यू सिस्टम में रीमेक्स करा गया है, और क्या अंदाज में गाया है दोस्तों, क्या काफी अच्छे गाने हैं। मिल के सुनते हैं।

जी दोस्तों, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही साथ निभाएंगे और भी चुनमुन करेंगे, आपके गाने पे हम जरूर नाच करेंगे। और नाच का दूसरा नाम लक्ष्मी नजर में है चुनमुन, भूल मत जाना। चुनमुन करना, घर पे भी चुनमुन कर सकते हैं, बाहर भी चुनमुन कर सकते हैं, बैठे बैठे चुनमुन कर सकते हैं, और जहाँ भी आप चाहते हैं चुनमुन कर सके, क्योंकि चुनमुन का दूसरा नाम है डांस डांस डांस। चलो दोस्तों, घड़ी की तरफ देखा जाए तो कौत ऊपर तालुफ हो चुका है। चलो हम आप लोग सुनाते हैं एक बार फिर से उषा उथुम के गाना, क्योंकि हर गाना जो मैं आप लोग सुना रहा हूं वो 2026 का है। और क्या आवाज है, भूल मत जाना। आप सब चुने द एवरग्रीन लव द लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे, और मैं हूं अनिल सारजू। जाने ना लो मैं आ गया, ठीक है, मिलके सुनते हैं।

ये गाना तो है, ये शमा के इसने कुछ स्पॉन्स में गाया है, और ये गाना ये शमा। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उषा उथुम के आवाज़ में, और हम आप लोग के चलाते हैं क्योंकि वक्त जा रहा है, हम आप लोग के चलते लेके बनते होते तो उठ देखो मेरे को सुनते हैं आते रहे, बन उठे तो उन आती रहे।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Ja, dus dat je op zoek naar Johnny number 1, zie nieuws en kutje reclame. Op zoek naar reclame, uitgangsagenda. Op zoek naar de jaye, majalutie. ठीक है दोस्तों, हम हर एक को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, क्योंकि आज हर एक को जुमा मुबारक हो। आज जुमा है, हम जुमा के लिए खातिर एक ज़रूर एक जुमा के गाना आप लोग को सुनाएंगे। अगले हफ्ते से जुमा का प्रोग्राम फिर से होगा, एक घंटे का जुमा का प्रोग्राम है, स्पॉन्सर प्रोग्राम रहेगा। और एक बार फिर से हर एक को जुमा मुबारक हो। जहाँ तक हमारे ये लोग हैं, जो हमारा मुस्लिम भाई बहनों, जो जहाँ तक ये सब जुमा करते ही, हर उतना दूर तक हमारा ये आवाज़ पहुँचे, आप हर एक को जुमा मुबारक हो। हम जुमा के लिए एक जरूर जुमा के गाना आप लोग को सुनाएंगे। एक गज़ल है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी के, या नबी सलाम अलैका। चलो हम सुनते हैं।
2: आज खत्मुल अंबिया पैदा हुए, शाफ़े रोज़े जज़ा सल्ले अला पैदा हुए, अर्शो कुर्सी झुक गए तस्लीम अहमद के लिए, उठ खड़े हो मोमिनो ताज़ीम अहमद के लिए।
3: सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद,
4: रब्बे सल्ले।

जा दोस्तों, पंछी बनू उड़ती फिरू आज मैं गगन से। सुनीता बुधाई ने सही जवाब को दिया है और इस गाने को मांग किया था। मैं ज़रूर ये सोचता हूँ कि जितने लोग इस प्रोग्राम को सुनते ही ज़रूर पसंद किया है, क्योंकि भी बहुत ही बिकराल गाना है, बहुत ही अच्छी गीत है जो हम लोग अभी सुना हूँ। ठीक है दोस्तों, हम काफ़ी वक्त नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इस प्रोग्राम में हैं। हम बढ़ते हैं, हम चलते हैं लेवार्दा की तरफ, जहाँ से भैया शिव गोविंद इस प्रोग्राम को सुनते हैं और हमेशा पसंद किया है। भैया ने सही जवाब को दिया है, भैया शिव गोविंद ने, और मांग किया है। जितना गाना है सब फरा सिंह बच्चा, हम लोग मिल के सुनेंगे गाने को। और हेमंत कुमार, लता मंगेशकर इस गाने को गाया है, आशा परेख ने इस फिल्म में काम किया है। ये सही जवाब है, जो भी सही जवाब देंगे हम सच में कहेंगे, और जो सही भी नहीं है, मैंने कहा पांच उंगली के बीच से हम रफ्तार से देखेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ हम करेंगे।

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे एक बार जरा तुम कह दो हेमंत दादा और लता मंगेशकर का आवाज, फिल्म बिन बादल बरसात, हेमंत कुमार का, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने गाया, म्यूजिक हेमंत कुमार खुद म्यूजिक को बजाया और लायरिक से शकील बदायूनी, विश्वजीत आशा परेख महमूद इसमें काम किया है, और ये जो सही जवाब को दिया है लेवार्द का भैयो भैयो जुगोबिन जो सही जवाब को दिया है, कहते हैं हिंदुस्तान लिखे से बकवा अपने के ना छील पाए तो वही कदतरा गैला, सच बात है, एक जोक है, एक जोकिंग है, बकवा अपने के ना छील पाए ना खाई पाए तो वही कदतरा जाता कैसे छिलप। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, देखते चलते सुरीनाम की तरफ हाईवे, जहाँ से प्रभा प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं, और मांग क्या है, मैंने कहा ना एक बहुत ही अच्छा गाने को मांगा जो पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी ने कुछ दिन पहले इस गाने को गाया है, और देखा जाए तो कौन सा गाना है हम आपको सुनाएंगे, हम मिलकर सुनेंगे। प्रभा जी आप भी प्रोग्राम को सुनते हैं और अब आपका गाना आपके घर तक हम पहुंचाते हैं, कानों तक पहुंचाते हैं, मिलकर सुनेंगे क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिस रेडियो को सुनते हैं, घर पर सुनते हैं, और मैंने कहा था ना चुनमुन करना मत भूलना, जानते हैं ना लक्ष्मी नगर में ना डांस को चुनमुन कहते हैं, चुनमुनी।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे पहले मुझे तुमसे प्यार था, कुछ नए स्टाइल में, कुछ नए ढंग में, और परवा जी हाईवे पे रहता है, सही जवाब को दिया है, कहते हैं बकवा कैसे छिल पाई अपने को ही का दतरा कर दे, सही जवाब है परवा, और आपको गाना मैंने घर तक पहुंचा दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद का प्रोग्राम को सुनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं वेलखदाक से गीता काशीराम, वेलखदाक से द सेस्त्रात रेक्स गुलाम न गुलाम नबी वेख नेख बी गीता ब्यूटी जलोन है जिसे, और वो सही जवाब को दिया है। जो भी यहाँ से जाते हैं हॉलैंड से, काफ़ी उसे लोग हैं जो अपना बाल कटाते हैं, बाल बनाते हैं, फिर करवाते हैं, कुलेर में जिस कुलिंग कुलेर में जिस रंग से आप चाहते हैं वहाँ पे होता है, और उसका जो पेडिक्योर है वही होता है, नखून लगवाना है जो भी कराना है, चुनमुन करना है वहाँ भी चुनमुनी कर सकते हैं बैठे बैठे, क्योंकि वहाँ सभी कुछ है। वेलखदाक से तुई दस इस्तरात गुलाम नबी वेख नेख बे गीता ब्यूटी सो सालों ने दोस्तों। ठीक है, सही जवाब को दिया है, और मांग क्या है देखा जाए तो, मांग क्या है मूवी जूली से ये गाना है, और देखा जाए ये रातें नहीं पुराने जिसमें राकेश रोशन ने काम किया है, आनंद बख्शी इसमें जो जूली में अपना म्यूजिक को बजाया है, या राजेश रोशन म्यूजिक को बजाया है, और देखा जाए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जो लायरिक से, और मूवी है जूली, ये रातें नई पुराने मिलके सुनते हैं। काफ़ी लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं, काफ़ी दूर दूर से प्रोग्राम सुनते हैं, अभी हम चलेंगे जर्मन के ओर, जर्मन से भी लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं, काफ़ी पसंद भी करते हैं, जो पंजाब से आया है, पंजाब के लोग हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं प्रोग्राम को। अभी हम चलते हैं जर्मन के ओर एक दो गाने के बाद, क्योंकि सही जवाब को वो सब भी दिया है, और हक बनते ही गाने सुनाने के लिए। ये तो चला गया है वेलखदाक सही की तरफ।

0: जी दोस्तों, ये रातें नई पुरानी, अभी आप सुन रहे थे लाइफ लाइफ गाना, आप सुन रहे थे गीत, आप सुन रहे थे ये रातें नई पुरानी, फिल्म जूली से निकला गाना है और चला गया था वेलखदाख से ही। देखा जाए तो हाँ, गीता काशीराम सही जवाब को दिया है, और देखा जाए तो इधर से इस तरह रेक्स गुलाम नबी रेख नहीं खबे गीता ब्यूटी सलोन, जो भी कराना चाहते अगर होलैंड से जाते हैं कॉन्टेक्ट कीजिए वहाँ पे और जाइए, काफ़ी अच्छे बाल बनाते हैं, बार को कौन सा कॉलर मांगते हैं यार, और सभी कुछ वहाँ पे मुख लगे पे दुखी रहे सभी कुछ है, जल्द से जल्द वो होलैंड का आएगा, हम लोग के हम उसका रखलामा जो है करेंगे, जल्द से जल्द आप हमारा रखलामा को सुनिए, जल्द से जल्द वो आप उसका सभी कुछ यहाँ पे भी हम लोग करेंगे रखलामा सब। अगर आप सुरीनाम जाएंगे, अगर आप सोचते हैं कि बाल बनाना है या क्लियर कराना है, तो जाइए आप करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं जर्मन की तरफ, जहाँ पे ममता प्रोग्राम को सुनते हैं दूसरी तरफ से, और पसंद करते सही जवाब को दिया है और मांग किया है मेरा प्यार की उम्र इतनी सनम, मिलकर सुनते हैं। काफ़ी लोग हैं जो प्रोग्राम को सुनते हैं दूर दूर से, उन सब सुनने वालों के लिए मैं धन्यवाद कहते हैं, और हर एक के गाना मैं ज़रूर सुनाऊंगा, अगर आज नहीं तो अगले शुक्रवार को हम इस फरमाइश से पूरा करेंगे। चलो दोस्तों, आप भूल मत जाना कि कहाँ पे हम चून हैं, ब्रॉडकास्ट है द एवरग्रीन लव द लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे हम चुने दोस्तों, ये बताना ज़रूरी है कि हम कहाँ पे है, दनाक शहर में है, और जहाँ पे हम बैठे हैं काफ़ी लोग इस वक्त देखा जाए तो सुनुकू पकड़ते हैं, सुनुक बार्स पकड़ते हैं, यहाँ पे काफ़ी लेके जो यहाँ बैठ के बारबेक्यू करते हैं, नदी के किनारे है, सरसराहट हवा चल रहा है, बाहर भीतर तो गर्मी है, बाहर बड़ा हवा चल रहा है, काफ़ी अच्छे लगते हैं यहाँ पे। हम भीतर से देखते हैं तो क्या हम कितने बोट है, लॉफ बोट जो चल रहा है, बोट चल रहा है, बारबेक्यू हो रहा है, मुझे भी जाना है यार, इस बोट में बैठ के सवार करना है, सवारी करना है और बारबेक्यू भी करना है। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे फरमाइश की तरफ, और ये चला जाता है जर्मन की तरफ, मिल के सुनेंगे।
1: आप सुन रहे हैं यादों की सरगम, यानी बीते लम्हों की मधुर आवाज़।

मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। ममता इस गाने को मांग किया था और सही जवाब को दिया था कि बकवा अपने आप को छिल नहीं पाएगा, इसलिए वो दतरा गैल बता फराक था बकवा गैल है हर्ष आर्थ कहे खज गैल है हर्ष लगे कि वो अपने आप को छिल नहीं पाता उन्हें छिल पाता था। ठीक है, सही जवाब था और चला गया दूसरा दौरफ जहाँ से ममता इस प्रोग्राम को सुनते हैं पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं ब्रेदा की तरफ जहाँ पे मामिन प्रोग्राम को सुनते ही और पसंद करते ही एक बहुत अच्छा कलाकार भी है जो हमारे साथ गाना गाते हैं टेक अ चांस करो को फरमासी के साथ। हमारा जो ग्रुप है करो का उसमें वो गाना गाते हैं और दम ब्रेदा साते हैं, काफ़ी अच्छे गाते हैं। आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, मामिन को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे गाते हैं। और सही जवाब को दिया है कि बनान कैसे छील पाई अपने खत वही खत गए दतरा, और मांग किया है फिल्म दर्पण से एक गाना है मुकेश ने गाया है, नेकम तीन एनन सीफन तक के गाना है। देखा जाए दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, फिल्म उपासना के गाना है, देखा जाए तो उपासना के गाना है। ठीक है भाई महमूद, ये गाना आ रहा है आपके नाम क्योंकि सही जवाब को दिया है और सही गाने को मांग किया है। मैंने कहा था जो भी गाना आप मांगिए नेकम तीन एन के नेखन तीन एकदम 26 तलक आप मांग सकते हैं, हम ज़रूर पूरा करेंगे आपकी फरमाइश। ठीक है, सही जवाब दिया है, सही गाने को मांगा है। आप है तो हम हैं तो आप है, मिलके सुनेंगे दर्पण को देखा फिल्म उपासना की, ये गाना है।

जी हाँ दोस्तों, गोरे गोरे चांद से मुख पर फिल्म अनीता की निकाला हुआ गाना है और म्यूजिक डायरेक्टर है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सिंगर है मुकेश और लायरिक जो चला है वो है राज घोसला। ठीक है दोस्तों, ये चला गया था फर्स्ट कोतन जहाँ पे शांता साजू प्रोग्राम को सुनते और सही जवाब को दिया है, आपके घर तक आपके कानों तक मैंने इस गाने को पहुँचा दिया है। अभी हम चलते हैं अलमेरा की तरफ जहां से वीरेंद्र सारजू भी प्रोग्राम को सुनते हैं सही जवाब को दिया है और पूरा फैमिली इस प्रोग्राम को सुनते हैं। बहुत खुशी की बात है कि इन लोगों ये सब हमारा प्रोग्राम को सुनते पसंद करते हैं, मेरा नहीं हिंदुस्तानी यार फोन हिंदुस्तानी रेडियो का आप सब सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हो। और सही जवाब दिया, मांग क्या है, फिल्म धड़कन का एक गाना है, दिल ने ये दिल से कहा, हम मिलके सुनते हैं। देखा जाए तो मूवी है धड़कन, सिंगर है अलका याग्निक, कुमार जानू, उदित नारायण और हम सब मिलके सुनेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे गाने को मांग किया है वीरेन, बहुत विशाल गाना मंगले है दोस्त और ज़रूर हम सब मिलके सुनेंगे जहां तक आवाज़ पहुंचते हैं, जहां तक लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं वहां तक हम सब सुनेंगे। फिल्म में काम किया है देखा जाए अक्षय और सुनील जेती, शिल्पा जेती, हम आप लोग के सुनाते हैं, हम भी सुनेंगे साथ में और इस गाने पर भी कुछ आप लोगों ने हिल सकते डोल सकते हैं, मिलके सुनेंगे।

जी हाँ, हमारे सुनने वाले तुम भी मुझसे प्यार कर लो और मेरे से वीरेन सारजू और पूरा फैमिली इस गाने को मांग किया है क्योंकि सही जवाब को दिया है और सही गाने को मांग किया था। फिल्म धड़कन का निकाला हुआ एक गाना है, एक सॉन्ग से किया अच्छा गाना मांगा था वीरेन। सच में जी खुश हो गया सुन के ये गाना, काफ़ी दिन बाद हम ये गाना सुन लिए। फिल्म धड़कन से निकाला हुआ गाना है। ठीक है वीरेन, थैंक यू कि आप प्रोग्राम को सुना है और पसंद भी करते हैं और गाने को मांग किया है, सही जवाब को दिया है। ठीक है, हम चलते एक बार फिर से फुर्सकोतन की तरफ जहाँ पे रेमन कोहाबीर प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं और सही जवाब को दिया है और मांग भी किया है। वो रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, देखा जाए मिस मैरी है मूवी का नाम और देखा जाए तो इस फिल्म में काम किया है मीना कुमारी, किशोर कुमार ने काम किया है इसमें और लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, हेमंत कुमार के ये जो कंपोज किया गया है, ये म्यूजिक डायरेक्टर है उसने बजाया है और लिरिक्स से राजेंद्र किशन जो हाथ चलाया है, कलम चलाया है, जो हाथ से स्याही चला गया वो राजेंद्र किशन है। और क्या गाना है वो रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, फर्श को उतन के तरफ जाते हैं।

जी दोस्तों, ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है। अभी आप सुन रहे थे, देखा जाए तभी आप सुन रहे थे पद्मश्री मोहम्मद रफी और द क्वीन लता मंगेशकर की आवाज मूवी मिस मेरी। ठीक है दोस्तों, चला गया था फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां से रेमन प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं और सही जवाब को दिया है। ठीक है, प्रोग्राम को हम आगे चलाते हैं क्योंकि वक्त कम है। 3 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे, हमारा तुम्हारा साथ 3 बजे तक रहेंगे। उसके बाद अगले मंगलवार को और शुक्रवार को फ्राइडा के फिर से आपके साथ रहेंगे। अभी नया सवाल हम करेंगे और उसका जवाब फिर मुझे देगा, तो वो फरमाइश मांग सकता है। तब तक के लिए हम चलते हैं सूरीनाम क्वेटा से, जहाँ पे जयन के बड़ा भाई, जिसका बीबी अभी बेबी हुआ है घर पे और सही जवाब को दिया है। जयन काका है और काका जाने बेबी बहुत, वो काका जयन के हम जाने लो बहुत बहुत नज़दीक से हम जाने लो, हमें मामू बुलावे है और माई से हमारा नाता भाई बहन के रिश्ता है। और बेबी आया है और घर पे बेबी आ गया है, खुशी की बात है, फूलो पोलो। और हम सब अपने फहन की तरफ से आप लोग सभी दुआ करते हैं, हर एक दुआ में हर एक प्रार्थना में यही कहते हैं कि बेबी जो आया है उसका तंदुरुस्ती मालिक बनाए दे और हमारे साथ बड़ा हुए, प्यार से बड़ा हुए। और हर एक जयन ने काफ़ी अच्छी गाना मांग किया अपने भाई के बेटे के लिए। ये बेटा या बेटी मैंने नहीं पूछा ना, ओ या मैश है, बेटी है जो आया है। जयन खुश होके और इस गाने को मांग किया है, सही जवाब को दिया। जयन आप प्रोग्राम को सुनते हैं और अच्छी बात है यार कि आप काका हो गया है। तो मांग किया है फिल्म अनारी से एक गाना है, हम मिलके सुनेंगे।

जी हाँ दोस्तों, रारारू रारारा रारारू, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी। ठीक है, परी तो आ गया है क्वाता में, राइट क्वाता में। फिर ड्राइवर वहाँ पे बच्चा हुआ है घर पे, और जयन काका हो गया बा खुश होके अपने भाई के बेटी के लिए ये गाना को मांग किया और सही जवाब को दिया। ठीक है जयन, आप और दीदी आप लोग प्रोग्राम को सुनते पसंद करते, बहुत बहुत धन्यवाद है। एकदम सुरीनाम से फिर रहे क्वाता से, यार क्या क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग प्रोग्राम को सुना है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, हम मांगते हैं। एक है राबिया, सही जवाब को दिया है और वो भी एक गाने को मांग किया है। मुझे हक बनता है राबिया के लिए भी एक गाने गाना घुमाने के लिए, सही जवाब दिया है। और देखा जाए तो मूवी आंसू बन गई फूल, निकंतिन निकंतिन सस्तक के गाना है और सिंगर है कुछ किशोर कुमार आशा भोसले। और देखा जाए तब लायरिक से गोविंदा मुनी, उसका लायरिक से म्यूजिक है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, आप तो जानते हैं ना। और जो चलाया गया हाथ और कलम वो गोविंदा है। चलो हम सुनाते हैं आप सबको कि राबिया कौन गाना मांगी से।

जी हाँ दोस्तों, अभी जाने कैसा है मेरा, अभी आप सुन रहे थे देखा जाए तो आवाज़ किशोरदा की आवाज़ और आशा भोसले की आवाज़, और चला गया था रबिया की तरफ जो सही जवाब को दिया है और हक बनता था एक गाना को मांगने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, देखा जाए तो रूदी गोली भी इस प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है। जैसे प्रोग्राम है वैसे हम प्रोग्राम को ले चलेंगे। सवाल था और सवाल पे सही जवाब को दिया है, रूदी गोली भी सही जवाब को दिया है और देखा जाए मांग किया है। रात कली एक ख्वाब में आई, हम देखते हैं रात कली ख्वाब में आई, और किशोरदा की आवाज़ है दोस्तों। म्यूजिक है एर दे फिरमन की यार, मरुज सुल्तापुरी के है, सुल्तानपुरी का लायरिक से हाथ कलम चलाया गया है, मजरूत सुल्तानपुरी के। चलो भाई रुदि, आप प्रोग्राम को सुनते हैं, रुदि गोली है और प्रोग्राम को सुनते पसंद करते हैं। आपके नाम सही जवाब दिया है, सही गाने को मांगा है। रात कली ख्वाब में आई नई कंतीन एनन सैफन तक का है, और देखा जाए तो नवी निश्चल ने इस फिल्म में काम किया है। चलो आपको हम सुनाते हैं।

जी दोस्तों, रात कली एक ख्वाब में आई, लेकिन तीन एन जीवन तक का ये गीत है। और हमारा भाई गोली रुदी गोली जो हमारा साथ भी गाते हैं तीक चेंस कल को फरमासी में, वो सही जवाब दिया और इस गाने को मांग किया था। भाई रुदी, गाना मैंने आपके नाम कर दिया है और दमकर तक आप जुना है मुझे कहा, थैंक यू। वेल ठीक है रुदी, प्रोग्राम को हम चलाएंगे आगे, आप पसंद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हो। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे अपने अगले हफ्ते फ्राइडा के लिए। एक सवाल है, सवाल को ठीक से सुनिए, जे प्रोग्राम को सुनिए, सवाल को सुनिए, सही जवाब देना। आज सभी कोई सही जवाब को दिया है, कोई गलत नहीं है, सभी कोई कहाँ है बकवा, कहाँ छिल पाई अपने आप को, कैसे खाई, ठीक बात है, सिर्फ बंदर के छिल के खाई पावे, ठीक ठीक बात है ना। एक जने से लिखी से, बंदर छिल रहे हैं, मोई से बकवा इंसान छिल रहे हैं और कोई ना छिल पाई। ठीक है, मेरा सवाल है अगले शुक्रवार के लिए, ऐसा कौन सा चीज है जो ऊपर से आते हैं जमीन पे गिरते हैं लेकिन जमीन से ऊपर नहीं जाते हैं। एक बार फिर से, कौन सी बात ऐसा के जो ऊपर से आवे हैं और जमीन पे गिरे हैं, नीचे गिरे हैं और नीचे से ऊपर ना जाए, ऐसा कौन सा चीज है। तो लोग अभिनेस में ऐप कर सके, ऐप खुलेगा हमार सुख के, हमार ऐप खुली अभिनेस ऐप कर सके, कौन आंतोर थे गाना भी ऐप कर सके हमें, और सुखवार को हम फिर से सुख के हम फिर से इस प्रोग्राम को ले जाएंगे आगे, फरमाइश से पूरा करेंगे। और जानिए एक बार फिर पूछिए, ऐसा कौन सा चीज है जो ऊपर से आवे है एकदम नीचे तलक प्यार से आवे है, बहुत अच्छा लगे जब आवे तब मोई लगे, वो छोटे छोटे के मोल के देखत लेकिन नीचे से ऊपर फिर ना जाए, कौन सा चीज है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं एक बहुत ही ओशन ऐप हमें आए रहेगा कि देख, ओकर नाम भी ना है, नंबर से ऐप पठाए से नाम ना है गाम देखी लो, और एक चीज और देखे लो। ठीक है, सौ में तीन एक जल्द जल्द लिखी से कहा सौ वक्त एक फिर तीन लिख दी सौ। ठीक है, एक ऐप हम पहले बाटी से नाम से नाम ना लिखल है, टेलीफोन नंबर वेल है, और मैं एक चीज लिखल बा कि हमार नाम ना लिए। वो एक गाना बोले, अनिल तू अपन गाना को सुना दे हमें जो तू अमृता उमराव सिंह के संगे गायले बाटे, ज्वाला कर म्यूजिक बजाइस बा, ऐसे ही यहाँ पे लिखल हैगा, बोले हमा कति गाना बजा दे। वो अंतुअर्थ भी उस सवाल पे एक जवाब ना दे से। ठीक है, तू सुरिनाम के बाटे, कहूँ मखंता से है, मखंता के है लेकिन अपन नाम ना बतावे के बा। ठीक है, हम सुनाबे जो गाना तू मांगे हम रख चुके बाटे, हम सुनाबे और छोड़ गए बालम हम अमृता उमराव सिंह से गायली बाटी, ज्वाला म्यूजिक बजाई सेगा, हम सुनाई लो और हम जान लो कि तू प्रोग्राम के सुने हैं फराज सिंह बा, हम न जान तू के बा, हमें लातर वेल बताइए तू के बाटे छा मन तू रेडियो सुने है और सब चीज खाए में ना चाहिए कुछ ना रहे के, और ठीक है खाए में हो सके लेकिन ठीक है, हम तोर अरमान भी पूरा कर लो, हम नहीं तू के बाटे मान फ्रो वे तकनीत मार, तोर अरमान हम ज़रूर पूरा करेंगे। और आप जानते हैं कि आप हम सब चुन हैं द एवरग्रीन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से, हम सब चुन हैं और आपने मांग किया है छोड़ गए बालम, हम अनिल सारजू और अमृता उमराव सिंह ने इस गाने को गाया है, मुकेश और लता के गाना है, हम लोगों ने फिर से एक बार गाया था, हमारा आवाज़ है और अमृता उमराव सिंह जो की आवाज़ है।

जी हाँ दोस्तों, ये जो मुझे लिखा था, मैं टेलीफोन फिर पकड़ता हूँ, एक ऐप और आया उसका। कहते हैं अनिल तो कैसे, हमें ना जाने, हम तो इतना बड़ा फैन रिली सुई नाम हम, जब हम मस्ताना खत गाओ थे ली नहीं सैसन ताख्तक सैफन ताख्तक आख्तन ताख्तक नहीं ताख्तक के बात है। और लिखा है कि एक आध को और सुना दे। ठीक है, हम तो सोचे हम अपन गाना गाए कर, तब मनाई बोली हम अपन गाना सुनाए लो। ठीक है, तो रहमान भी पूरा करेंगे हम, तब तक के लिए काफ़ी बहुत देर ना बचल है, ऐसा एक क्वार्टर और बचल है, हम सुना सके एक दो गाना अपना भी। और तब तक, और जो सवाल मैंने किया था कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो ऊपर से आते हैं और नीचे से नहीं जाते हैं, उसका दो मुझे सही जवाब को आ गया है। और एक कहता है अनिल सॉरी, एक हैप नित क्यून लॉजन दुर्द है दृक्त अनहेल फैन दाख फेर दर। ठीक है, वो भी ठीक है, बहुत दृक्त था उसे, गर्मी है, उसे भी मैं कह देता हूँ। ठीक है, सही बात है, अगले हफ्ता वो सुनेगा। तो दो या तीन जने मुझे सही जवाब को ऐप कर दिया है, सही सही जवाब। हम तो ना परवाह कर ली कि इतना स्नेल अंतोड़ता है जय जय जय अंतोर देगा। बहुत अच्छा दिमाग है आपका यार, बहुत स्नेह एक सोच के निकाल ले, यही तो मांगे लो, बहुत बहुत अच्छी बात है। और हम चलते हैं, जो गाना मांग किया है मेरा, मैं एक एक दो गाना और अपना सुनाएंगे। एक आत्मा को मांग किया कि एक आत्मा गाना मुझे सुना दो, बोले दो मुकेश का। ठीक है, टाइम नहीं, लेकिन पूरे एक घंटे हम सुनाते हैं आपको गाना, और अगले हफ्ते हम जरूर सुनाएंगे यहाँ के सिंगर के गाना। मेरा रहेगा इरविन अब्दुल, कह रहेगी हमारा जो अमर ऊपर हैगा भाई बिरबल सुरेन, उसका गाना भी मैं सुनाऊंगा अगले हफ्ते। हमें टाइम निकालेंगे एक हफ्ता, हम सब यहाँ के लोग जो गाना गाते हैं सुरीनाम के, उसका गाना मैं ज़रूर सुनाऊंगा। तब तक के लिए हम चलते हैं, हम सोचते हैं आप मखंता के हैं और के बाम ओन खफेर पेशर कहे तो हम जान गए के बातें मोहम्मद भी सही करना बाटी। ठीक है, हम आपके नाम करते हैं, यही गाना मांगा है, तब सुनाई लो अपना आवाज़।

अनोनीम है, अनोनीम है, अब तक अनोनीम है। अब फिर से वो चीज चली खिस बा कि देख एक गाना और सुना दे हमें धड़कनों के साज पर, तू के बाटे यार हमें बहुत नज़दीक हम आए लो तो, और तू के बाटे हमें जना, तू के बाटे हम अब तक हम ना जान पाए लो। बोले फतेह सिंह बा यहाँ लिखल बा देंक मार वे एक बैन और ई गनवा भी हमें सुना देना धड़कनों के साज पर। बोले यूट्यूब पे है लिखी दे दियो पे हम ट्राई कर दे आई हम कुंज करे यार। ठीक है अब फिर से टिप करेगा। अच्छा ठीक है फिर से आने टिप ऐसे मैं इसको हम गाने को सुनाते धड़कनों के। हम सोचते हैं ये आखिरी गाना चलेगा आज के प्रोग्राम में। अगले हफ्ते अगला हफ्ता मंगल के हम रहेंगे दिन्सदाग इन फ्रेडाग बेनक्वेर दिन्सदाग ओम अख्तूर भजन प्रोग्राम आख्तूत नहीं दाना कुछ हिले मिले जुले गीते गीतों से हम आप लोग के जरूर सेवा करेंगे। ये एक आखिरी गाना चलेंगे आज के लिए दोस्तों, उसके बाद अभी हम बात करते हैं इक्वेत नीत वी बैन ओन खफेर। हम ओन खफेर जाने लोग के बाटे बाकी अब सही करना बाटे तुके बाटे और अगले हफ्ते खत यहाँ लिख चुका है गाता रहे मेरा दिल। ठीक है अगले हफ्ते फ्रेडाग को हम जरूर इस गाना को मंगलवार को हम पूरा करेंगे आपके गाना। तब तक के लिए ये गाना आप सुन ले धड़कनों को मेरी आवाज़ है।

जी हाँ दोस्तों, ये मूवी एक जो गाना इस फिल्म में आया है उसका नाम है कौन हो तुम। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक था आज का प्रोग्राम। आज हमारा प्रोग्राम था 3 बजे तक प्रोग्राम है। अब न्यूज़ हुई और कुछ रिक्लाम हुई, यहाँ तक कि हम आप सबसे ज़रूर विदाई लेंगे। और यही कहना चाहता हूँ कि मंगर के अभी प्रोग्राम सुनिए, रोज़ सुनिए फाहौन हिंदुस्तानी के प्रोग्राम। हम देश दाख के रहिबे और फ्राई दाख के हम रहिबे। हर एक को हमारा राम राम नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और हम सोचिए हम लोग फिर से पिता

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: जी हाँ दोस्तों, एक बात तो मैंने भूल गया बताने के लिए, मैं ज़रूरी समझता हूँ ये बात बताने के लिए, चुनमुनी करना मत भूल जाना, नाचने का दूसरा नाम है चुनमुनी। बाय बाय स्वाई स्वाई।

प्यार हो जाएगा। दूसरी डार्लिंग उषा उद्धव, रेखा भरतवाज,

افواہ ہندوستانی ریڈیو کی پروگرام سونی دی چوہان

प्यार हो न जाए शराब बच के रहना ये बीमारी जो है प्यार का, अगर ये छा जाता है दोस्तों तो कभी नहीं छोड़ता है। फिर भी प्यार तो होना चाहिए। मैं रंग शरबतों का, लेकिन उससे पहले खबर है सुतमेर में दोस्तों एक मकान में आग लगा है और वो है रेचस है जो है अंतोनी डोंकर होफ पर। तो रेचस है सो जो है तो उनमें से एक घरों में आग लगल है और ब्रांतुएर आग बुटा दिया है, लेकिन पता नहीं कितना स्कार अभी भैया है। ऐसे ट्वीट फर्दीपेंग एकदम जर के राख हो गया है दोस्तों। बहुत दुख की बात है कि ऐसा हुआ है। और ये भी सुतमेर का अंतोनी डोंकर होफ में है।

0: दोस्तों लेडन में बॉफकर्स एक घर स्लोप कर रहा था, तो उस घर मिला है एक कैनिया से बोआ। जी हाँ, ये सही बात है। एक्ट में चीजों हुआ है। ये भी लेडन में भय रहे काम मिलल है एक सांप, एक स्लांग, एक कैनिया से बोआ। तो दीर एम्बुलेंस आया है और उन्हें पकड़ के ले गया है। पता लगता है कि ये बोआ किसी का होगा और घर से फिर निकल के चला गया है बाहर। और जो एखनार है बहुत ढूंढ ढाम किया लेकिन नहीं पाया। लेकिन आज तलुक अभी, कल के बात है, लेकिन आज तलुक अभी किसी ने नहीं गया है बोआ को लेने को। तो दीर असल में बोआ है और वो भी लेडन में। दीवाना ये मन
1: है, ये मन क्यों पागल है धड़कन।
0: सोनू एंड अलका,
1: प्यार आया है
0: ये मौसम। फिल्म चोरी चोरी छुपके छुपके का सॉन्ग आप सुने।

मौसम के समाचार दोस्तों, फनमिदा खुशल सोन एंड स्टापर वॉलकर अलकार आफ इट नोट ओसन कन लात एंड लोकाल ऑन विस बाय टॉट ऑन टू क्लीन कोमन टेंपरेचर टुसन 23 एंड 28 ग्राड रहेगा। रात्रि में फाकर बहुत रहेगा और टेंपरेचर 17 ग्राड होने वाला है। जब वीकेंड है तो कल शनिवार का मौसम किस तरह से रहेगा? कल जब शनिवार है तो जी हाँ दोस्तों, कल शनिवार है तो मैक्सिमम टेम्परेचर 21 ग्राड होगा। उसके बाद सोमवार रविवार को 20, वीकेंड के बाद सोमवार को 20, मंगलवार को 20 और बुधवार को 20 ग्राड होने वाला है।

और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया फिल्म। हम दोनों निखिल ट्विन सेस्त का फिल्म है दोस्तों, देवानंद फिल्म में काम किया। इसी फिल्म का सॉन्ग अभी आपने सुना, श्रीमान मून जी पोत का पसंद था, मैं भौरा टू है फूल। मैं का आइटम है दोस्तों, तो मैं भौरा टू है फूल, ये मत भूल कि जवानी लौट के आए ना। निखिल आतन फेर तक की बात है, जब दिलीप कुमार नारगिस ने काम किया फिल्म मेला में, तो माइटी मुकेश और शमशाद बेग के आवाज़ में आप सुनेंगे। शकील का लिखा हुआ सॉन्ग है दोस्तों, और गाना क्या बोल है मैंने आपसे बता चुका हूँ, मैं भौरा तू है फूल जवानी लौट के आए ना। दिलीप एंड नारगिस, वाह क्या जोड़ा था। और ये सॉन्ग है हैंगलो के रहने वाले श्रीमान चांदर रघुनंदन, साथ ही साथ उनका जीवन साथी नैली, दोनों के लिए।

हेंगलो शहर हेंगलो के रहने वाला श्रीमान चांदर रघुनंदन सारे साथ उनका जीवन साथी नैली दोनों के वास्ते सॉन्ग पेश था। दोस्तों छोटा सा स्पॉट ब्रेक था, वीका का फिनाला आने वाला सोमवार को, लेकिन कल जब शनिवार है तो दर्द और फीड प्लेक का मुकाबला रहेगा। रखेरन ट्वेरल कैंपिन जो है फ्रैंक रेक वो इंग्लैंड से मुकाबला करेगा, वो भी 11 बजे रात्रि में मोर को सात रख और एलफी इन द आफन। और जो फिनाला है वो है रविवार सोमवार को 9 बजे रात्रि को स्पायर अर्जेंटीना से मुकाबला करेगा। और जैसे पता चला है तो कनाडा में वहाँ पर बॉस ब्रांड है और वो धुआँ जो है खतरनाक धुआँ जो है स्कादल का धुआँ जो है वो स्टेडियम तक पहुँचा है। दोस्तों पता नहीं कि अभी इस खेल में मन काफी खबर किया जाएगा या नहीं। और जो शेष रेक्टर रहेगा आने वाला रविवार को वो है एक स्लोफेनिया का शेष रेक्टर है जो वीका में दो बार इस वीका में दो बार भी खेल में न अपन अब अपन कला दिखाया है मेक्सिको एक्वाडोर जैसे तो ये राउंड में तो ये स्काई सेलेक्टर जो है स्लोफेनिया का स्लाफको फिनसिक ये खेल को लय करेगा। और स्पोर्ट बरेक्टर जी हाँ दोस्तों अर्जेंटीनिया सीफन द केयर वीका का फिनाले में भाग लेगा और तीन बार वर्ल्ड कैंपियन हुआ है तो अब की बार जब जीतेगा तो फिर देख के रहेगा कि अर्जेंटीना वर्ल्ड कैंपियन रहेगा, लेकिन अभी सोमवार को मुकाबला के बाद पता लगेगा। वैसे तो स्पायर भी वर्ल्ड कैंपियन हुआ है और इस वक्त रखेरन यूरोपीस कैंपियन है फ्रैंक रेक, तो जबरदस्त मुकाबला है दोस्तों सोमवार रविवार को एक खेल को आप जरूर देखेंगे। मेसी का कमाल आप जो देखेंगे और वैसे तो स्पाय का स्पेलर्स जो है वो भी किसी से कम नहीं देख मैं कहता हूँ। जी हाँ दोस्तों ये स्पाय का स्पेलर जो है उसे अजमाइए, इसलिए कि इंच फॉर इंच जितना स्पेलर है सब बढ़िया स्पेलर है। और वैसे भी जो अर्जेंटीना का स्पेलर्स ये भी सभी बढ़िया, तो जबरदस्त मुकाबला रहेगा आने वाला रविवार सोमवार को 9 बजे रात्रि को एक खेल होगा। आइटम जारी रखता हूँ और अब की बार मैं कहीं कवि न बन जाओ तेरे प्यार में एक कविता।

0: था महेंद्र कपूर, लेकिन उसका साथ दिया भी नाइटिंगेल, लता मंगेशकर। घर की ओर देखता हूँ दोस्तों तो आत्मित रह गया है इस वक्त 5 बजने में। मैं सोचता हूँ एक आखिरी सॉन्ग चलेगा इस आइटम में, और वो है मैं एक हसीना वो एक दीवाना। फिल्म आया सावन झुमके का सॉन्ग है और ये एक डांस सॉन्ग, आप भी डांस कर सकते हो।
1: हो गया

सुबह आकर चले जाता है, शाम भी इस तरह आकर चला जाता है, लेकिन लेकिन दिल में जो यादें है, दिल में जो यादें है वो कभी नहीं जाता है। चटनी शो का प्रोग्राम में चलेगा। सेस हलीमा बिलोंग टू मी।

लगभग एक घंटे का मिक्स। यहाँ दोस्तों मिक्स चटनी है, इसे मैं रोक लेता हूँ। अब की बार फिगारी सिंह के आवाज़ में आप सुनेंगे एक सेलिब्रेट लाइव सॉन्ग।

And now, river of love. River of love, Suriname Chutney, Soca Celebration. और गाने वाला है अनिल रामदीन।

सिरनम रिवर के बारे में दोस्तों अभी आपने सुना, और अब की बार जो मैं चॉइस करके रखा हो ये एक ट्रेडिशनल चटनी है त्रिनिदाद एंड टोबैगो का, और वेस्ट इंडीज चटनी म्यूजिक पर भाग लेता है लीला एम, इन्हीं की आवाज़ में और उनका साथियों सभी की आवाज़ में ये सी हम सॉन्ग आप सुनेंगे।

सेना बनवारी डालपुरी नाइट द अल्टीमेट इंडियो कैरिबियन चटनी सोका सेलिब्रेशन। वाह वाह क्रिएटेड बाय अनिल रामदीन।

0: सेंसेशनल चटनी सोका सॉन्ग अभी आपने सुना नैन मटुवाला सिडनी के आवाज में आप सुनेंगे।
1: वाह
0: वाह वाह वाह

0: गया।
1: सुंदर सपना का कहानी यहाँ से मैं रोक देता हूँ दोस्तों। हम देख लिया बहुत से केन के पेड़ है और कल कटवा रेवटी राम रूप के आवाज में आप सुनेंगे।
2: Bolo, play a hand for me before you go now.
3: Bolo, but you have seen nothing. My play something before you go up there.

मिनट बाकी है 6 बजने में, नी कम्युनिटी फॉर सेस। मिस्टर जॉनी नंबर वन आ गया स्टूडियो में दोस्तों, मेरे सामने बैठा हुआ है। और मत भूलना 6 बजे के बाद प्रोग्राम उफलेगा, और खासकर उनका न्यूज़ ब्रेक जो है आप जरूर सुनते रहना।

minuten voor 6, 6 minuten रह गया 6 बजने में। दोस्तों 4 बजे से आपका सेवा किया आशा उम्मीद के साथ कि आप सभी को प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। वीकेंड है, आप सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड पेश हो। आने वाला शुक्रवार शाम में चाबे एक बार फिर मैं प्रोग्राम गीतों का संगम के साथ स्टूडियो में उपस्थित रहूंगा। पावन हिंदुस्तान रेडियो पर चुने हुए भैया जॉनी नंबर वन का प्रोग्राम चलेगा। खुशबू रहेगा, फूल खिलेगा, जिंदगी रहेगा, फिर मिलेगा आप सभी को एक सुहानी रात।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता जी दे हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी आदाब, सत श्री अकाल। जोनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। दोस्तों आज ही शुक्रवार है, फ्राइडे 21 जुलाई हो चुका है, घड़ी की ओर देखा जाए तो 10 मिनट ओवर जैसा हो चुका है। अभी आप लोगों एक मस्त भरी प्रोग्राम को सुना है, वो है राजन द्वारका से। उससे पहले आप लोगों ने अनिल सरजू का प्रोग्राम को सुना है करीब 12 बजे से एकदम शाम तक, और वो भी चल आ चुका है, हर शुक्रवार को उसका प्रोग्राम होगा, और यानी कि मंगलवार की सुबह भी वो भजन प्रोग्राम भी चलाएगा। और यहाँ से हम अपना देश विदेश के समाचार हर हफ्ता की तरह आज भी शुरुआत करेंगे। नॉर्मल्स मैन से आज है शुक्रवार, लाइव है इस वक्त स्टूडियो पर, फ्राइडे 17 जुलाई 7 मिनट ओवर जैस हो चुका है।

इस ट्यून से आपके तो जरूर पता चल चुका होगा, पता चल चुका होगा कि हम स्टूडियो में आ चुके हैं। एक ही दम हम चलते हैं अपनी समाचार की ओर। तो दोस्तों हम तुरंत जाते हैं सूरीनाम की ओर, हम तुरंत जाते हैं सूरीनाम की ओर कि सूरीनाम में क्या हुआ है, क्या होता है वहां के सिचुएशन आपको बड़ी मीठी जुबान से कोशिश करेंगे बताने को। अब देखो भैया दृक्सवा के चिजुआ सनमो हमें एकदम उफलाई गए भाई, उफलाई गए नानी कानी कितना कितना मिले भैया ना एगो दुगो बोल चस वाला भैया 7 किलो के हिसाब से पूरी मिले है सूरीनाम में भैया, पूरी मिले है ना भौजी लोन जो गलवाम लगावे है ना कुनुआ से जो सूंघल जा दोस्तों, और ये वही पूरिया है जो यहाँ से हुआ जाए भैया समकाल होवे है। तो ऐसे भैया कैसे स्ट्रांड के सिपाही एगो अख्तन फेफ तक यारख आरे स्टंट इज ऑन फ्लग भाई भगल है हाँ सेलन हर्ष कैसे स्ट्रांड से एगो अख्तन फेफ तक यार के आरे स्टंट भाग्य भैया, और ये है के ये अदमिया भैया अख्तन फेफ तक यार के एकर पैदाइश भैले कोलंबिया में, एक बोले कोलंबिया कोलंबिया जॉर्ज एलिजेर आरिसा ओर्टेगा हाँ इतना लंबा नाम है मौसी। तो एक बोले ई रहा एगो बड़का क्रिमिनल और खानी साक्षी के अड़ में रहा जो न तरी मनी बोल चस वाला भैया खरूच खालक दृक्ष हंदल रहा, और एकर पास वापन फिर वापन रहा भाई, और एक के समन बंद कर ले रहा निकर के भग्य कैसे स्त्राते। अब सोचो भग्य है नानी कि कोनो भगाई से एहू बतिया हो सके तो वंद्रिक्सोन वाला अरमियन के पैसा भैया हिया से हुआ रहे है, और तो जाने हमार सिपाही के नाम सूरीनाम में बड़ी ऊंचा है नानी, इतना ऊंचा है कि का बोली भाई बहुत ऊंचा है, और खूब पकड़ाए पकड़ाए बन न हुए तो विश्वास तू कैसे करियो कि कैसे स्त्राद के सिपाही एक भगाई से कि अपने से भगल है बड़का और खानिस्तान सिकी ईद कोलंबिया रहा, और इन करके कई शस्त्रा से भग्य है। बोले कोलंबियान बोले जो जेके फिनिश वे लांसर नाचोनाली तैत रहा, और बोले बड़का दिल नाम राफान क्रिमिनाली तैत के और खानी सासी, और बोले है एकर पास सवन के मिलल रहा कोका इना मिलल रहा भैया असीसी पेल मिलल रहा मीता फिता मीना मिलल रहा, और मरवाना हाथ सब एक लगे पाए रहा ऊपर से बंदूक पिस्तौल सब पाए रहा एक लगे। सोचो तो ऐसन आदमी के सिपाही बन करी चौके चाहे भगे के बाकी भगे के भगा दे इसे कई शस्त्रार्थ की सिपाही नानी। बोले दे साख वारे ने फरत्राख्त बत्रों के नहीं इस ऑन द सूख बहजी स्टील अन अन फिर वापस वेत में। तो बोले है कोलंबियान ओम स्टीक हमारो अंदर है ऐ द सेलन हाउस इज ऑन स्नैप मेंस तू जाने भाई सिपाही सरनाम के विश्वास करे लाइक ना है नैनी रघुनो नन मोहबीर फेसबुक पे हमारा प्रोग्राम में आकर जुट गए, आपको हम स्वागत करते हैं नैली जी। तो सिपाही लोग के नाम बड़ा ऊंचा हमार सरनाम देश में भैया, और हमारा मथुरा का वो ना मथुरा मनोरथ का बोले कौन मनोरथ है अरे हरीश मनोरथ भैया मिनिस्टर फान यूसीसी एंड पॉलिसी के बात करी ला हम ते मनोरथ बोले तू खांग फॉर फ्रिंग द लिंग नीत इन फौदख
tal van gebieden in binnenland nog niet in beeld. Want Chinoa ke jaike Brunswijk, apres ego grip Chinoa ke pakrise, John Chinoa, barka barka banduk leike, op binnenland me se bawak karatra apan sona ke, Brunswijk gele sapke, aur skoutu surjati sapke pakarke aur laike bankarise, te ekan mare me Hanis Manoraj bole UCC, bole de toegang van vreemdelingen tot Suriname in de huidige situatie relatief wel eenvoudig is. Bolle bijdragen aan de situatie die zich dinsdag in het binnenland had voorgegaan. Bolle dassen chinoake. Bolle je zwaar bewapen ra. Bolle sepakarke bolle lege he. Lekin abbe tak joan kwe kwamilallah. Chori bhele skoutu ke muh mase bhaiya. Skoutu ke muh me. Skoutu me muh me bhaiya okar parasi me badka container ra. और ओमा कुएक भरला भाई सब कुएक चोरी हुई गए कोई जान न पाए से किस कौतु के मुंह में से चीज कैसे चोरी हुई गए तो ओकर बारे में मनोरथ ना बोले बोले अंदर सुख हो भैया वो अंदर सुख होते रहेगा बोले हु कॉम्ट दैट सो फील फ्रेमडलिंग सो स्नल फॉर हुनिंग क्राइकन आज वे हैट हेल प्रोसेस बकाइकन बतेकन है दैट ergens corruptie plaatsvindt ik hoor in de wandelgangen dat mensen voor $2000 gewoon een vergunning kunnen krijgen in die en is al jaren gedaan dat doe je hajar euro je toke he dat toke zijn naam ke vergunning mil ja matlab verblijf ke bhaiya yahan batawe ta hamar desh mein Suriname mein kya corruption hai बरा मलिजवासी हमें सोम्स हंसे के परे भैया कौन बिकाऊ ना है बहुत कमती भैया 2000 एरो जे तू धरिए तो जाई के फरखिन किन लियो और चिनवा धर के बंदूक भी पाए जाओ जाई के बेनालांत में से बफैल करे है तेकर बारे में भैया मलाई रायमोन सपून का बोले है यो ही सपून है भैया जो उनका बोले हैगा निकर के पीएल में से जाई के एनडीपी में घुस के और आज फिर बैठल हैगा काबल दीना में अब यही रायमोन सपून का बोले बोले सोरा चिनुआ जो सारा क्रेक कबीट में बोले पकड़ान है बोले सिम ने सिम टोन बस्ट्रेनिंग के बोले मैं दत रखेरिंग शाम में डे पार्लियामेंट मु सिटन ऑन द गफासिजेर नेशनल प्लान फॉर आनपक आउट टू स्ट्रिपलन तो भैया फिर यहां पे के पार्लियामेंटारी सिद्रिक सैमसन बोले है बोले मेजर बद्रैफन इन इट बेलालम सेइंग द एकन फेलेकाई डिस्टन हेवन एंड दैरफॉर wapens te beschikken hebben gezien de afdelingen बोले चिनुआ के खाली ना बोले औरो ढेर है बेनलांत में जो सबन ऐख बफै लिखे हुआ धरे हैं ओम दत सुनवा जे खोदे भैया वो बहुत जबर रूफ हुए है ऐसे बतिया है तो बोले एक के खाली चिनुए थरो बोले औरो है बोले जो हुआ बफै लख करे थे एकर बारे में शंगरु वंग का बोले हैगा फ्राक्सी खनौद बोले है बोले चिनुआ बवाकस आन खौदन अफफूर्त हेड बद्रैफ on bewaakt is achtergelaten bole John bedrijf voor op zo'n wak kodet raam bole apu bewaakt raad ook het abhies hebben roofkali hierdoor zijn ook spullen van die bedrijf ook derden weggenomen hij vraagt zich af wie de ondernemer hiervoor zal vergoeden dat je nou een keer beveiligingen kunt u pakken legele bante en je kan bedrijf voor hij gaat apu on bewaakt hoe abba ab hoe was het chichuri hoe ik het surik hoe ik het अब लांटी से पूछे कि ऊ अरमियन ऊ बदरेफो के अब जाएगा देख करे दिखाईले तो बाटो की तरह चिनुआ पकड़ के ले गए लो बाटो जोने को बदरेफ बवाक करत रहा मैं अब पकड़ के ले गए लो बाटो था तू अपन आदमी हुआ धरू सबके बवाक करे कि तो वहां जे तो के कोई ना तू सब का करे दिट इन तीन ताले या नीत ऑफ ए दरखलेके मनीर गेबेर्ड मेट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम DNA सुन इन कोमे द टाइड वेटगिवन प्रोडक्टन वर्डन इन गदीन सो दैट वी कुनन नागान व्हाट वी एज लैंड विलन Volgens minister kunnen buitenlanders nu als toerist het land binnenkomen. Orbole Hega, waarna de militaire politie slechts één zumeer onderzoek verricht voordat de toegang wordt verleend. De eisen, want ja, hij bij ja. To i hamar hanis manorat jon he. Bole 2000 bhario. Ta bole corruptie het ra he. Ki jai ke tu. Bole go verkening tu paaje. Yo eisen, want ja, he. Hamari nani loon.
और हमारे प्रोग्राम में आ गया है हर हफ्ता की तरह धर्मेंद्र श्री आपको स्वागत करते हैं। राज रामलगन भी आ गया है, आप सबको हम प्यार से स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में। अब देखो सुर जाति भैया तुलन जानो है, सुर जाति लोन देश के खात लड़े है, देश बचावे खात लड़े है। देखो ईरान में का हुए, अमेरिका में का हुए है, फेनी रूसलैंड में का हुए है और उक्रेन में का हुए है। सब सुर जाति लड़ाई वाला है भैया। आ हमारा सरनाम के सुर जाति पिस्तौल लेके अपर घोड़वे में ताक लेवे है राज। हमार सुरजतियन के ना हसीला भैया मंडे किया बतावे मिलिटर ने खनन तो वेन तक यार के इन बेन खसकोतन ना ऋषि मेतन मान दी बके साथ आसोम्बी कोनो सोम्बी से भैया गैला लड़े ते सुर जाति जो देश के रक्षा करे वाला भैया सुर जाति गल दाग दी रेखतर बोफर बेन में हीर वेर द ओम स्टैंडर्ड बोले लेगे अकादमी सिकन हाइस में मिलिटर राक ते है फरविकल इन वोर्डे वेस्टिंग मेटन मान दी बकेंस तात आज ज़ोंबी से सुरजाती लड़त रहा मुंह से और बोले तेरे तो हंड खमीन सा ज़ोंबी अ रिवॉल्वर उक वेल अ लोलो बाल खनों हेवन खतरोकन एंड फिर तो फेस स्कोट इन द रिक्टिंग है स्लाफ्ट ऑफर हेवन कस लॉस एन फन द कोफकल तरफ द सुरजाती इन द रेक्टर बीन ते लोलो वाला भाई नहीं लोलो वाला पिस्तौल कैसन हुए जैसे फिल्मों में दिखावे जाने उंगलियां देके खड़खड़ खड़खड़ ड्राई करे अमिताभ बच्चन वाला राका यार जो खड़खड़ खड़खड़ ड्राई करे बोले गोली कहाँ है बोले गोली कहाँ है बोले गोली नहीं है तो बोले आप गोली खा। तो ये वही बोला वाला को है कि भैया तो ई का बोले सुर जाति के दाग दी से गुड़ में और का बोले और रमिया का नाम बस ज़ोंबी भैया ज़ोंबी लड़त रहा। तो ये बातचीत है हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा प्यारे प्यारे। अब देखो भाई एगो बाप के एगो बाप का करिश मिंदर यारख सोन ओतो के कॉफर में भर के और भैया मर्चा लगा दे इसे हुआ पे जान ना चाहे लगावे के भैया खसला दे लोई में लगा दे इसे लंडवा के और लंडवा के बारा में सांदल करी से बपुआ हिया बतावे है अने अने ही था स्कैर्प पेपर ओप

काकरी से इसके ही बोले बोले अजूमा भाई से बोले अजूमा भैया अजूमा चमरचा ओकर गफूलक देलन फन लिखाम फन मेंदरियारक ओके लगा दी से भाई ओमा लुंडवा के लगा दी से गा सोचो भैया इमे सांदलिंग है कि ना ये बांचित हुए है गा ये बांचित हुए है गा मार्त में तब मैवा काकरी से भैया मैवा काकरी से गैल है अब बोले मैवा भी बतरोक हैगा द फरदाक द हरफिया द मुदर फन द मेंदर यार का फनोमन द सेन सोन मोखलक बतरोकन वास कवेस बे ऑन खपास सेक्सुअल खतरा दिस इलंडवा तेरा बरिस के भैया ऑन खपास सेक्सुअल खतरा रहा और एक लगा दी से मरचा बपुआ के बोले रा मैवा और बोले तेनेस द रिट प्लास द फरदाक द मेंदरियारख ओतो के कॉफर में भर के ले गए हैं और बोले हैं ओमस्टानर्स जिस दानख आला मेर्डन और बोले स्कोटू बेल के ते स्कोटू बापुआ के पकड़ के ले गए हैं और ओ एम का करी से भैया ouder de wettelijk en morele plicht heeft zijn kind te beschermen, opbollen op te voeden en een veilig omgeving te bieden, ongeacht de aanleiding voor hem vermeend, ouder ook baap maaike te verplicht trouw, kijk er ik maar patana he, ook er asli baap he, bhaiya ki nakali baap he, tu jane is die vader bhi hove he, to bollen de ouders van de minderjarige waren reeds uit elkaar, volgens de verklaring van de minderjarige liet de verdachte zich tegenover hem herhaaldelijk negatief uit over zijn moeder. Het OM stelde in dat een kind op deze wijze wordt betrokken bij de strijd tussen ouders en dat is schadelijk gevolgen. Dus je bapua mewa. Isab ka bole hega skeide ho chukal ha. To ek er bare mein ab ek ke 12 mahina ke OM jahal mangi sega. Veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 6 maanden vroegtijdig ze. Te ilondwa ab kakere bab mai na hai bhaiya sanghe. Te i verwaarloos hoi ge seksuele handel karat ra. Ab apua jai ke marcha nahim laga di se. Te ap marbo kari sega. Te 12 mahina baris. Are 12 mahina ab jau fruiti karo bhaiya. Ab tor saat kaha marcha lagi kaha marcha na lagi tulo jano hai. Jahal mein marcha lagawe ki aur kuch lagawe bhai. सेक्सुअल मिसब्रेक के बारे में तो हमारा प्रोग्राम में चित्रा उतार भी आ गया है स्वागत करते साथ साथ शारात सारदेशा आ गया है मीला जी हाँ अब समझ गए हैं तो थैंक यू वेल फॉर सो फिर हार्चेस अब हम जाई है देखो हम जाई है फिर यहाँ पे सरमक्का के और महेंद्र जोगी लगे भैया जोगी के अधीन फोर्स इतर रहा ओके निकार के बोले बहरे तू भाग जा ओम जय जोगी बोले रहा अधीन के बोले इतना सलेख फोर्स इतर दे रहा कम लोग के कहीं ना मिले बोले तू सलेखता बाटे बस अधीन उधियाई का दुनिया बोले अब से उधर भीतर बोले तू सलवा मत से निकल बोले तू क्लोइतर बाटे तो जोगी जाए के बोले क्लोइतर बाटे तो तू क्लोइतर लाइस्टर बाटे भैया का होवे दे ना में लड़े है जैसे कोई कुत्ता बिलार भैया झौंझियाई तो यहाँ अब जोगी रफीन से गैल है तो अब वो बोले है जोगी बोले हम मांगे लान जोन तुलन इतना ढेर बैतल आंसर रईस बनावे है जब देखो तो सिमोन चल जा है तो गगरी रिस्ट लान चल जा देव देखो तो बैतल आंत में रहे है तो अब बोले हम मांगे लाए जाने कि बैतल आंसर रईसन दी मिनिस्टर इन अफखलू पर रखेर यार hebben gemaakt. Daarin moet volgens hem staan welke ministers zijn afgereisd, waar ze naartoe gingen, wat het doel en rendement van de reizen was en hoeveel geld daarmee gemoeid was. De jogi bole assemblee me bole hamangila sab jane ki tulon gaile hai konchi kalle konchi nakal baad bhaiya parmeshwar ka bole hai understand transparency over dins reason maar bole hai parmeshwar bole ha bole hum bhi mangila jane the ndp ke parliamentarian rabin parmeshwar bole hai reaksi me daarop dat het verzoek op openheid een reactie verdient hij zei verheugd te zijn dat de oppositie nu eveneens het belang inziet van een transparante werkwijze. Al dus permisser, bole hambilo mangel janen, bole apkeise, bole akia koele oppositieke.
ऐसे बोली से हमारी जनता हमना बोले लाइया जो लिखल है वो तो बतावे के तो हमारा काम है नया रो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर हमारी जनता हमारी प्यारी प्यारी जनता सुरीनाम में बड़ी आ रही हुए भैया बड़ी ब्रोफिसर मरे देखो यहाँ का भैल है जब देखो इतना आ रही हुए है फरकेर में अब एगो ब्रोफिसर भैया जात रहा मखेंता कनाल वैख में गो ब्रोफिसर जात रहा भैया और ओके मारिस ओतो मारिस ये रमिया का भैया जहाँ वो मा स्टार के फुटबॉल फैलतुआ है हुआ तो हरदम रुकीला भाई तब वो मा स्टार के फुटबॉल फैलतुआ लगे हुए पे मारी से ओ तो 10 बजे एंड थिंग फॉर 11 सिपाही पाई से ब्रेक के गो ब्रोफिस के मारी से दिस दानक अरेस्ट खवन दत है तेर प्लाट से ओवर लेट कि मर गए भैया द बस्ट्यूड फन अ पर्सन इज ऑल्सो रेड ना आरेडिंग डोर सोंदर से ओम है स्लाक्टोफर त बकोमरन और ओ तो वा मार के भैया भग गए ई बहुत दुख के बात है होई से कैसा जे जा स्लाक्टोफर वा लगे लेके दतरा अतरा जाते शायद उ बच जान बकि उ पेल भागले भैया द बस्ट्यूड दिस ओ ओवर खबरा फॉर फर्दर ऑन onderzoek en verklaring de aan kan pare reli bestuur wat kan hebben iets weer naar haar maar अब भी हम ओकर बारे में और फिनी फिनी आप लोग के हम बतावे तो बेटा सनई भी आ गया है बेटा जी आपको हम स्वागत करते हैं साथ ही साथ आ गया है गीता भी आ गया है तो गीता जी आपको भी हम बहुत प्यार से अपना प्रोग्राम में स्वागत करते हैं जाने हैं विलियम होलीडर के बारे में नीदरलैंड की न्यूज है और ओके सबन पकड़े रह जाए कि दुबई में भैया बहुत आदमी के मरवाई से तो लो जाने पीते दफरिस के मरवाई से एक के सबन दुबई में जाए में पकड़ के नीदरलैंड आयल है और एक स्ट्राफ सेख में एडवोकेट एक खात ना मांगे लड़े एडवोकेट ना मांगे लड़े वन एडवोकेट के भी पकड़ के सिपाही बंद कर ले रहा वन ये रमिया इतना ढेर पैसा है वेलम हो लीडर के कि सब कुछ मांगे कीने तो हो लीडर वर्थ ना 11 यार 11 बरिस बन रहा अब उ गए लेगो एक्स्ट्रा बफेल दे रिक्टिंग में और हैगा फिक्ट में जो नीदरलैंड में हैगा बहुत लोग के पता है फिक्ट में को बहुत बड़का खफंगने से जैसे सांतो बोमा भैया बाकी ई और जबर चीज है फिक्ट में यहाँ के बफेल किंग बहुत स्वार है तो सबसे स्वार्द्र अने बफेल किंग अने का बोले हैगा खफंगने से मिले जाए के धरी से और बोले हैगा स्टा सेक्रेटरी क्लौडिया फन ब्रुखन जिस सी एन फेल हाइट के बोसलेस करी से कि से होली इधर एडवोकेट सुक के पेश ब्यूरो में बताई से कि 68 यारक होलीडर अब ओके मिलल हैगा लीफंस लंग सेल उ कभी ना निकलेगा यहां बताई गई से नानी बोले जिंदगी भर अब तू नानी करिए बोले हैगा फोर्स एंड ब्रोकन हेड सीरी मोर्दन में मर्दान 11 11 यार साथ बे है इन एक्स्ट्रा बफेल द इरेक्टिंग एबी में इन फिर द स्ट्रेंथ बफेलिगद गेवंगनिस फ्रॉम नीदरलैंड और बताया गया दोस्तों ई महीना में राज फॉर स्टाथरेक्स टू फासिंग यूथ बस्केरमिंग स्टाथ सेक्रेटरी फ्रॉम ब्रुखन नवा बसलाइज करीज के होली इधर खफानिस रखीम में जाएगा आर्नो रित हाथ होली इधर फरब्लेव इन ए बी ओंडांग्स द अपी पाई सेगा लीफंस यानी कि लीफंस लंग के जहल पाई से दोस्तों और हम बताया विलियम होली इधर के बारे में हमारे जनता और आगे हम अपना प्रोग्राम के लेकर चलते भैया तो लो जानो फेनिसवेला में आज बीफिंग चबड़ा आए बहुत आदमी मरल है फेनिसवेला में सुरीनाम लेकर ना पहुंचल भैया वहां सुरीनाम तो फेनिसवेला से दूर ना है लेकिन अब मेक्सिको में भैया के सुवारा आज बीफिंग फॉर द साउथ वेस्ट कोस्ट में मेक्सिको में और मोखलक हैगा कि एगो सुनामी आ सके हैगा मेक्सिको में देश एक हो में हार्ड फास कि सुरीनाम में न चल जाए भैया वन वन दिट सोर्ट
aardbevingen gaat door, mensen. Die gaat gewoon door. Oh, hier hebben we bataille hier. Zuidwestkust Mexico mee. Zware aardbevingen. Eiland Jahan. Kabul heeft aardbevingen. Krachtra 7.4 is heel groot, mensen. Amerikaanse geologische dienstbataille zeker maar mee. Bolle heeft een 10 kilometer diepte. Porto Madeira mee. Vlak bij de grens van Guatemala. Grenswippen met Mexico. Waarschuwing is gegaan dat mogelijk een tsunami aan de wala hey, dosto. Maar laten wij goed volgen. Kietje joa oisje he. Ki abbe doro na awe bhaiya. Want we weten allemaal de grote tsunami die we hebben gehad namelijk. Die is voorbij. Maar hoeveel schade had die gedaan? Ik hoop het niet dat er zoiets gebeurt. Maar in Venezuela hebben wij namelijk de aardbeving gehad. Waar honderden mensen overleden zijn. Daklozen zijn. Hamlo janela Venezuela mee. Ka bhaile to. तो ये बातचीत हो रहा है हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता. अब देखो चकल्लस भैया अबे अमेरिका ईरान के तुरिया हम बताब का भैले पहले हम जाए और सलंतवा में घुसी या उक्रेनवा में घुसी सेलेंस्की भैया अब देख का करी से सेलेंस्की का करे भैया. रुसलान के बोट जितना समुंदर में है सब के ड्रोन से दागे है. ई तो जैसे स्ट्रात हॉर्मुज के चियुआ तुलुन जाने ईरान है और अमेरिका हुआ पे लड़े है हॉर्मुज के जहां से तेलवा के बोटियन पास हुए है. अब ई काकरी से सेलेंस्की अब रुसलान के पहले सब राफी नादर रहे वन बहुत ढेर दागी से अब रुसलान के बोटियन दागे के शुरू करी से रुसलान के पुतेन सोचे अब का होई कहां शुरू करी और कहां एंड करी जाने चाहिए कैसे. तो यूक्रेन से प्रेसिडेंट जो नहींगा वो है सेलेंस्की. अब वो का करी से भैया अपन आन खवीचा से करे तारत फंड नेशनल फेल हाइट के डिफेंसी के बोली से यहां पे भैया कि वो सब डिफेंसी के आउट मिनिस्टर क्लिमेंको आन फॉर फेलक है इस रात की धरी से को पुराना मिनिस्टर रहा डिफेंसी मिनिस्टर जो रहा leidde tot protesten in onder met Kiev. Even klonk dat Zelensky wilde aanwijzen voor ambtenaar. To abbe ik erba. Bare met terug ke aur fini fini hem het abbe. Ki ka bhail hai. Au ka na bhail hai bhaiya. लेकिन लड़ैया जो है बहुत जबर हुए भाई बहुत जबर हुए है. उधर ईरान अमेरिका शुरू करी से दागे के मेरी तेरे दूल बहुत ढेर के दागी से एगो बुड़की भी दाग दी से जहां बुड़की पचे सामान जात रहा ईरान के ओके डाक के तूर दे से. और इधर ईरान का करे हैगा मिड ओस्टन में जहां जहां पे अमेरिकन से बासस हैगा जैसे हैगा का बोले हैगा यॉर्डानिया में वो सब के खूब दागे है. देश की लड़ैया कब दोन हुई भाई बहुत आफत है बहुत आफत है. और तेल हुआ लड़े भैया और हम लोग तेल हिया महंगा में महंगा में चलो. और हम लोग का बोले है किनो नीदरलैंड में तेल हुई है अनलोडेड 2 euro 30 cent हुई है दोस्तों पर लीटर हैगा 2 euro 30 cent हैगा प्लस मिनस कहीं पे एक चीज ज्यादा है और एक चीज कमती है. बड़का दाम पे और महंगा हुई है बेना में और सस्ता है. तो सस्ता का 2 euro 30 है भैया. और एक हफ्तों हम भले रह ली तम भले रही 2 euro 24 cent पर लीटर. और ये हफ्ता हम हुई है ये हफ्ता हम 2 euro 30 cent हो गएगा. तो दोस्तों हम और जाए भैया एसएलएम की ओर. हाँ SLM में हमारा टोनी इस्त्री भी आई है. टोनी जी आपको हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं. अलमेरा शहर से आकर हमारे प्रोग्राम में जुट गया है. अब देख का भले SLM वहां के तुरिया
SLM heeft een persbericht verduidelijkt. Die bole hega luchtvaartmaatschappij. Geen officiële audit pijs van een internationale civiel toejane. Ze hebben een vliegtuig van keurker. SLM ze hebben een keurker. Die zegt dat die veilige buitenland met urekina. Dus ze hebben een bericht bij dat die veilig is. Maar hier op de applicatie lega. Bole officieel audit snap hij lega. Van de internationale bole organisation heeft ondergaan. Het ging om een vrijwillige veiligheid uitgevoerd door de Duitse bedrijven. Ook vrijwillige Duitse bedrijven. Oekraïne hebben we binnen officieel namen. De correctie volgt nadat eerder berichtgever volgens de maatschappij mogelijk de indruk heeft gewekt dat SLM rechtstreeks was doorgelegd. SLM benadrukt dat dit niet het geval is en zegt onduidelijk te betreuren. De Isabolera AGK SLM ke mag in buitenland met bolle goedkeuring en veiligheid. Maar blijkbaar is dat de Duitse maatschappij vrijwillig keurkeler en SLM ke admi hoe pe bhaiya pagla ka dage lagala bombal dage lagala khaba kaate lagala gana gawe lagala ki hum lon pel deli bati aur na jamu is onderzoek kare ta ab later jab ji yo bhai lega ta bole hega bole an bole hega bole aise na hai bole dit audit werd uitgevoerd bole an geaccrediteerde een auditieorganisatie binnen het internationale programma. Hoewel de normen waaruit de controle was gebaseerd afkomstig zijn van ICAO, betekent dit volgens de maatschappij niet de sprake zijn van officiële audit. De onderscheid acht SL belangrijk voor correctie en transparantie informatie. Nee, er mijn gana gawe he, akufariari he yena he, akabak katai legale manani, aise batia to, to reshma nibar sandhiniya bhi a gaya he, aapko hum bhi swagat karte he, apna nieuwsbericht ke apna pyara pyara program me, to reshma nibar bhi a gaya he. और आगे हम अपना प्रोग्राम भैया सुरिनाम के स्कौतु के भैया हम लोग टिंग पेन दे सकेला भाला रे समा स्कौतु ने इतना जबर बदमाशी करे भैया देखो कैसे स्ट्रासुटा बड़का क्रिमिनल भगे छौ गो सात गो को कहीं न पकड़ा रहा तो अब देख एगो स्कौतु फिर पकड़ाएंगे भाई सेरगियो भैया सेरगियो पकड़ा है पोलिसी मान सेरगियो भैया ब्राजीलिया में चल गए रहा ब्राजीलिया आए लोग के अंदर ये पे पकड़ ले से भैया एको 40 बरिस के सिपाही से नाम के सेरगियो से ऊ चल गए रहा ब्राजीलिए जैसे लौटल हैगा ओके अंदर ये पे पकड़ ले से पो ने प्रोक्यूर जनरल जो ने हॉफ जी सी के donderdag gemeld kreeg ze ook eens aan de rijpe pakken ze gaan en Jeremia Kahe wordt verdacht van diefstal, verduistering en medepleging dan wel medeplichtigheid van diefstal en verduistering zo tjoto bhaiya ja likele gezochte politieman Sergio to sipahi baate bhai o je tera chije to nmuria pe ba ekar baare me bole hega. Een Brazilië naar Suriname is teruggekeerd op instructie van zijn advocaat. Vieira meldde hij zich vervolgens bij de militaire politie. Vanwege geconstateerde onregelheden zal de advocaat Apikerwarem Kahoy to Irmaji Apko bhi hum bahut pyar se apna program mein swagat karte hain. Ye wohi hai Resma Irma Irma Ram Tahal Singh. To Irmaji अब देख भैया निकेरी में का भइले गो पिया कड़ नसेड़ी में का करी से तोनिया देख नसेड़ी का करी से बोलिए जोनी ढकोले हो या रे ढकोले महाराज है ई दारू पी पी भैया और जब बीर कोई डाम पे जात रहा तो ओके गरियावत रहा लड़त रहा झगड़ा करत रहा उपिय कड़वन के तो हम भी जानी रे कोई जमाना में हम सरनाम में छोटा रही तो दुई गो तीन गो हमार रहा बीरवन नाम ना ले भैया जो डाम पे पास हुए जे ही देखे वही के नानी माई उलटत रहा गाड़ी देवत रहा आदमी डर के मारे कुछ ना बोलत रहा ओके एरमा सोचे का जाए न सीढ़ी के मुंह लगे का जाए न सीढ़ी मुंह टेररिजेर करत रहा पर सोलत कैनिक मेंस इन मेन भीड़
En ऐसे निकेरी भी एगो 58 यार के निकेरियाने भैया दारू पी के बीरा लोग के भैया गाड़ी देवतरा सब कुछ कर ऐसे में एक रोज इतना ढकोली से कि 7 बजे रात के ई बात हुए पीसांग का पकवे ते पीसान भैया ना बारा बनावे वाला पीसान रस्तवा के नाम बा रस्तवा के नाम बा पीसांग का पकवेख में ते एगो औरत के भैया फिरन देर तक यार के औरत के का बोले हैगा और ओकर 2 बेटुआ एगो 14 एगो 15 और ओकर बेटुआ के एगो संगतिया 19 बरिस के ओके सब के ई अदमिया पिया कड़वा एम हा एर अनफाल करी से भैया औरत के 3 लड़कन के 14 बरिस के लड़कुआ के काटी से भैया काटिस ओकर हाथ में गहरा घाव होई गे है राज गहरा घाव होई गे है 14 बरिस के लड़कुआ के काठी से और ओकर माई के भैया ओकर माई के भी काठी से कितना देही में कपुआई से ओकर देही में और बतावे हैगा ओफर फॉर वार्निंग बाय द अंदर अनवेज केस निट्स कमेल्ड और बोले द पुलिस स्टार फरदाख्त बकेन आल्स अल्कोहल फरस्लाव एन सो बुर्टबोनर फाकर हैबे uitgestelden uitgeschelden और बोले एक बार में सिपाही पारादेस के रमिया के पकड़ के ले गए हैं कोर्ट तेज लाते और ओकर घर से और बोलेगा जो चे काटेरा ओहु पाई सेगा बस लाखली से अब ई जाएगा जहल में भैया नतीलक अब एक के जहलिया में दरुया कैसे पाएगा कैसे पाई नानी तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता हम सोची तो लुके को गनवा सुना दे ता अबे हम तुरंत आ जाएंगे विनीता गौरा पूजा भैया कोनो गाना चटनी है

और मोरे जग पुरमनिता विली और ये था एक चटनी जो जो आपके हम सुनाई दिया है। तो हम चलते हैं और आगे, तो हमारा दिल बुद्धु भी आ गया है, आपके स्वागत करते साथ साथ रानी समुझ भी आ गया है। तो रानी समुझ मारा बहन होगा लेकिन बहुत ज्यादा समुझ है, तो आपको भी हम स्वागत करता है रानी समुझ जी। साथ ही साथ दिल बुद्धू भी आ गया है, हमारा प्रोग्राम में सब जुड़ गया है। तो अब हम जाई भैया ई हम जाई है, जोन आदमी बड़ा जबर चूसे है कुको ही नानी। हाँ जानो हमारे काम है, जैसे ही सुनवा कुकुया के बन हो जाए तो हम अब तैर बताएला कि कुकुई नहीं दलांत ना लियो हुआ कटिया में ना पकड़ियो बन है। बाकी सही सुनवा खुल गए है, सही सुनवा खुल गए भैया। हाँ अब कुकही तुलोन का बोले पकड़ सके है। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल ले कुकुया बंद रहा। हाँ अब कुकुही खुल गए है, अब जे सरनाम में है तुलन जाए के चोपू कर सके कुकुही। मसाला में बनाइयो खूब भिंडी डाल के, हम तो ना खाइए लेकिन जे खाए भैया बड़े स्वागत से खा है। अब सबको हम बोले ला भैये से एस माकले कुकुही अब हो गए है खुल गए है। और बोले हैगा सही सुनुआ खुल गए है, जिस आप लोग अब सगरो जाकर पकड़ सके है बेच सके है। तिस इन द खसलोतन सही सुन फरबोडन हम दिस और अंडा जोन है भी बंद रहा। द नाथ इज इट ओक फरबोडन ऑन द आलन टाइड एयरन कैट ऑफ एयरन नेस्टेड फरदीलन। तो हम बोली कुकुया के बारे में बोले वन कितने आदमी भैया जोन सुरीनाम में बाल उस सब के लावे मांगे हैं लेकिन उस सब के ना लाई सके भैया। हाँ भाई जैसे बोली ला इकोरता टाइड पे फेव तक यंगर सुरीनाम में अरेनिंग से मरल है भाई। दैट इज हील फील है बुद्धू फरकेस दौड़न ता लोब स्नेल ऑफ आल फेव तक स्लाफ ऑफर्स दी या ए दित यार मेरन देल यंगरन सेन ओफर लीड है भाई। यहां बतावे हैगा बोले तू ही दैसन फेवन तुएन तक भर में एनन सस्तक को आदमी मरल ला फरकेस से। बोले अतरवेल अबे हम लोग यूलिम बाटी और 50 गो भैया मर गए भैया, अबे हम लोग के दैसा मलक परल है का होइगा भला। हरीश मरोजे जिसने पुलिस को बोले मेरन देल फन स्लाफ ऑफर्स एंड अलमाल यंगरन में से अपन बेटवन के बिटियन के खुद अपरे लोन जे तुलोन जइयो तो आप लोन का बोले अपन लड़कन के खूब मोई से देखियो। यहां पर रानी बोले फौचे फान क्वी क्वी ओ या मैं यहां तो लिखले कुकुही इस ओपा

हम बोलेला एगो मैया के भैया, मैया के बोलेला एगो पास्टर रहा था एके मांगे बनावे, इसराइल के अम्बासादर मांगे बनावे से भैया थे एकर बारे में आदमी लोग बड़ा बसवार करी से बड़ा बसवार करी से मिनिस्टर मेल्फिन बोफा बैठन साकन के का बोले है गा बोले लेख नीड वाकर फन अ क्रीडीप ऑफ द मोनुमेंट फन द बिशप स्टीव मेयर als niet residerend ambassadeur van Suriname voor de staat Israël volgens de bewindsman in de overige kritiek op mij veel persoonlijk gericht en niet zakelijk op zijn werk. तो एक बारे में अदमी लोन बहुत बहुत क्रिटिक लेवर कर रहा मैं एक बारे में, एक बारे में एनपीएस के फ्रैक्सी फोर्स लेते फ्रैक्सी लेडर रहा जेब जेरल पावीरे जो फंड द बेसलाइटन फॉर द हैंडलिंग फॉर इजराइल टेकन ओवर द पैलेस्टाइनियन फुलकॉमन इन स्ट्राइक है मे द नॉर्मल फॉर वार्डन तुलन जानो है और मलाई लोन मुस्लिम है भैया और तुलन जानो है इजराइल जो रहा ऑफ हाई अबे पैलेस्टाइनियन के संगे का करी तो हमारा सूरीनाम के जो मुस्लिम सेगा मतलब कि दे नाम है तो इस अपना मांगे हैगा कि इसराइल में जाए के और एगो अम्बासादर बैठे एंड दारम हैव से दे से क्रिटिक मेंस एंड मोखो यूरी जीगर वेट हु एंड व्हाट इट इज तो हम चलते हैं और आगे भैया हियां बरोन तो तू जाने बारा मोये मोये वोड़ता है तो पूनम अवतार भी लाइनिंग से आ गया है पूनम जी बेटी आपको भी हम स्वागत करते हैं साथ साथ सुनील सुनील दत्त गजरी गजरी जी आपको हम प्यार से स्वागत करते हैं तो तुलन जानो सोमो हार्जो पॉल सोमो हार्जो का बेटा हुआ बरोंटो हाँ इतना लंबा लंबा कहानियों बतिया भैया किलोमीटर के फैया पे के फन आतो सेट गरियाई के धर दे से और एक टॉक्स ताज मुश्किल लिखिंग मिलल है लेकिन एक कोई पकड़ के बनवे ना करे है हाँ तो अब एकर बारे में भइल है कि आउट मिनिस्टर फॉर बिल लांस साके के बिस्सा के और एक्स मिनिस्टर क्लिमर हुफ ड्रांट के फिनेंशियन के रियाद नूर मोहम्मद ओवे के स्टार फन मुश्किल लिखिंग सब कर ले रहा फॉर स्ट्राफ बार फैटन और यह बताए गए है ब्रोंटो सुमहार्ड अस फरदाख्त फॉर होर दोर ओएम अब ओके सबन फॉर होर करी से ब्रोंटो के म कैसे भइल कैसे ना भइल है और नया न्यूज़ से भैया ईरान मेल्ट देर तक दो दिन अमेरिकन से अनफालन छौक सात रो छुई के लड़िया भैया और देर तक आदमी मरल है ईरान के अमेरिकन से अनफालन जो भले ईरान में बोले हैगा राख्तन मेरदन ट्वी होंद सस्त खवंदन एक बारे ईरान के वोर फूर्दर बोले है अनफालन ओवर एंड वेयर द अफ्लोपन दाखन बहुत अनफाल कैस अमेरिका ईरान के ऊपर और बोले ईरान भी दागी सेगा लुफ्त अनफाल कैसे कुवैत में और बहराम में जहाँ पे अमेरिकान के बस अमेरिकान से वहाँ पे उस अपने बासस भी हैगा फोकस ईरान से अने खारद बोले अमेरिकान से वापन ऑप्शन प्लाचन के दागी से समय द फेस मेल अनफाल ते हमर एट को फूड कि दसन को मिलिटेर दूलन इन द ब्यूट फन द स्ट्राट फन हॉर्मोज एंड इन द गबीड फन ईरान से कुछ दार बे वार फोकस अमेरिकान से लेकर ऑन द मेर रख Installatie, drones en marineschepen. Het doel van mensen, ik volg de oorlog. Namelijk niet alleen van Amerika en Amerika en Oekraïne en Rusland, maar toch wel heel veel mensen. Je baat hij, hamari, piari. जनता कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा तो दोस्तों हम और आगे चलते हैं

यहाँ पे बताई गई है मास्कर सुरीनाम में भैया मास्कर जाने का बोलो तो ना जो हमार मौसी लोन में के पुआ लगावे मास्कर वो के ना बोले ला चोरों और मास्कर वाक बोले ला सुनील जो मुड़िया में पहले कोई ना देख पावे वो मास्कर वाक बतिया ला ना हमार भौजी जो लगाए लगाए चमकावे वो मास्कर वाना है तो भैया वो मास्कर वा है अब भैया जो समझ जाए कि ऊपर फाल करे है यहाँ बताए गए है करिया करिया मास्कर पहले स्वार वापस परीक्षण ओफरफाल खौज सुकर्स काम पर और दुकान में भैया वही मारे तो चिन्ह वालों हुआ जाए जाए खौज सुकर्स जो ने अपन बफाई लिखिंग धरे हैं यहाँ पर बताए गए हैं कि 12,000 SRD 15 ग्राम सोना मारी से जहाँ पे सोनवन खुदा है क्रिमिनेलन खौज में एक अक्स विताई टू किन फोर्ट से दिन से फ्रीस दद क्रिमिनेलन किन तरुखेरन ओम दद बैट फॉल्कस हैं खरिंग वासमें से तो ई रूफवा के चीजवा हम तो लोग के बड़ा ढेर बताई चुकली है हम सोची तो लोग के और मोई मोई न्यूज हम बताई भैया और मीठा मीठा न्यूज हम तो लोग के बताई क्या होता है देखो भैया हम जाए तेरी अफ्रीका के ओर हाँ बोलिए जॉनी अफ्रीका में का भरी सूदान के बातचीत हो रहा है बुद्धू सूदान में भैया तू जाने हैगा बड़ा बीमारी है हुआ हाँ तो कभी गोरेला तो कि मोरेला कि कौन चीज ना मोरेला तमाकू ना गोरेला है भैया खोली रा बोलीला बीमारी है जेमा 114 आदमी मर गए हैं 1300 वो बस मैटिंग भइल है सूदान में खोरेला एगो बीमारी भैया बस बेटल का ड्रम इन्फेक्सी हैगा दी वर्ड फॉर ओट्स आर बैक्टीरिया फिब्रियो कोलेरिया द सिक्ट फॉर स्प्रेड सिक फॉर ऑल फियर फॉर फेल वाटर एंड फूड सेल एंड कान सिक स्नेल अल्बरेनिर खबीदे फॉर अ स्कोन ड्रिंक वाटर एंड खुद सैनिटेर फोर्सिनिंग के बारे में तो इतना जबर बीमारी हुआ है दोस्तों देश जनता लोन के ने, ने, का बोले अफ्रीका में वहाँ पर भरी दुख है हमारे जनता हमारे प्यारे प्यारे जनता हम जाई है भैया और आगे को अपना प्रोग्राम लेके काल प्लक वेत हाँ हम लोग के नीदरलैंड में काल प्लक वेत हैगा मतलब जब तू चौका बोले अपन पैसा अपन धन दौलत जोन बा नीत ऑफ द यस्ट मनीर है फरदीन तो के ये फ्योत यहाँ पकड़ेगा ब्लास्टिंग दिन पकड़ेगा तो के एनम निकिया जाए तो बोले काल प्लेक वेत मतलब कि जैसे मुर्गी के सब नो चले हुए पखनवन है ना राज तो के बोले काल प्लेक वेत तो अरमियन के पास कुछ ना है तो बोले हैगा वात खाइए प्लेक फानन काल के दूसरा चीज हो जाए काल प्लुक वैद जो नहीं गा तो के इनम निकिया ढाड़ी अब सबन मांगे भैया काल प्लुक वैद सुरीनाम में बनावे तब तो बिना कपड़ा के दया नोन जाए दया नाम में भाई बैठ सोचो तो काल प्लुक वैद मांगे दया नाम में सबन बनावे भैया फराख आंदा फुर रेक बस्कर में इन एट फुरे कभी ना हो पाई भैया एगो इंग्रिड कार्ता बैंक है का फोर्थ सेटर फॉर कमिशन फॉर रिपोर्टर्स ये बोले बहांदलिंग मांगे करे बोले हैगा वेदर रखलक फॉर क्रीक हम फॉर फोर डील बेटर बकेंट अल द काल प्लुक वेट दोनों डके नेशनल असेंबली में सबन ब्रीदर स्टेन फॉर द फॉर द डूलस्टेलिंग फॉर द क्रिमिनल en hun illegale verkregen vermogen te ontnemen. Maar John illegaal ze kini ze bijna 10 go 4 go helikopter. तो लोन समझ गए तो जेके जेके भैया देखियो और पुरी से और दृक्ष से और उस सब चीजों से सब बनाए बनाए धरी से ना अब ओके काल्पनिक वेतवा जे हो जाए तो सब बन जाए ओके काल करे बाकी उ वेतवा जाए तक मुंह तो देख के काल करियो वन उमा तो कितना आसा मले ये में बैठल है तो सीमा विष्णु दत्त भी आ गया तो सीमा जी आपको हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं तो यहां बताए गए हैं बोले हैगा आसाम ब्ले बोले ब्रेदर्स ट्विन करी से फॉर क्रिमिनल उन्होंने लिखा लो फकरी के फॉर मोहन तेदन से इस्टर रोंदा फॉर कमिटी फॉर रिपोर्टर्स
onderschreven. De woordvoerders het belang van de wet in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, corruptie en witwassen. Maar vroegen zij tegelijkertijd om verduidelijking over onder meer de rechtbescherming, de bewijslast, de uitvoerende capaciteit en de aansluitende begaande wetgeving. To karta brink jun he imang ekal pluk vetwa abhitalav ekar bare me krishna motra fe yahan pe ke bole hega ki bestrijding van de georganiseerde criminaliteit noodzakelijk is, maar dat de rechtsstaat daarmee steeds centraal moet blijven staan. Zij vroeg de een uiteen te zetten hoe de nieuwe wet zich voorhoudt. De ikker waarin toch een bhaiya bari jabar volg karab. Ki kaal pluk wet wa kab hitter ja hai. Corruptie wet ke bari san lagge bhaiya baki abbe corruptie karmiye na pakraan hai. Hoofdraad ka ni kahan kahan baithe labe itra corrupte lingen jo hiswa mein hai. Oke koi pakad ben kari sega. Dus ik vraag me af, regering, gaat deze wet wel werken of niet? De corruptie wet is al in. Toch zijn er zoveel corruptie in het land. En gaat deze wet wel werken, de kaalplukwet, of niet, mensen? Ik heb het grote twijfels eraan. Ik heb er grote twijfels eraan, maar ik zal dat op de voet volgen, mensen. Ki is heb koontje kare, koontje nakare, he. Dus die kaalplukwet is goed, maar gaan ze dat wel doen of niet? Dus daar gaat het om, mensen. Jantake de kawe kato sab koi eens ba. Ki kaalpluk wet wa in jai. Ba ki kaise jai, kaise na jai. Ab deko trimb ka karis bhaiya. Trimb bolie orlok karis na na na na. First care up karis se visum regeling na Amerika. Toe mensen, voor studenten, voor buitenlandse studenten en journalisten. John jai ke hua pe visum aanvraag karis Amerika ke. Deze maatregel in de nieuwste stap Trump begeleid kan illegale immigraties te verkennen. Arubole heka verblijf die 240 dagen kan je Amerika met toeristen. Studieprogramma's als journalisten krijgen maximaal verblijf van 240 dagen. Ongeveer 8 maanden natuurlijk Chinese journalisten, Chinoise journalisten, ook mag 90 dagen hoe per heke. To ICICE ook kerde zeggen die journalisten hebben moeilijker immigratie aanpak van Trump die zich kennen merk zo streng la handhaaf in de grote steden. To je baat hai hamari janta Amerika ke baare mein. Ya batawe Amerika 2023-2024 tak 1,1 miljoen internationale studenten, meer dan enig andere land. Deze studenten droegen 2023 50 miljard dollar bij de Amerikaanse economie ke baare mein. To janta हम बोली तुरके बताए दी तुरिया कैसे है अमेरिका के तुलन सुरीनाम में जितना लोग है उस सब के कैसे फिसम है हम बताए अलखमीन कि वेतवा स्कैरप करी से का बोले है अन ट्रंप अन वेतवा इनम स्ट्रेंग कर दी से तो जनता हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर बड़ा बड़ा न्यूज आंत लोग को हम देली नया नया न्यूज देली है और काबल बड़ा जोर से नाम में चोरी हुए भैया तेल सिर के काबल जब घरवा तरवा ना कमाएगा ना तो बोलिए का भाई ना हुआ चोरन भैया कबलवा काट देवे है गा तेल सिर के चीज काट देवे है तो कुमार सामी समझ भी आ गया है बारह देर में ले रखे नमस्कार हो राकेश जी आपको हम भी स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में तो हमारे जनता इन ब्रेकन क्रैश में फ्लुक अब चोर लेके हो तो भागे भैया पांच सिपाही दौड़ावे अब चोर काकरी से चोर भागे हो तो लेके बस जाए के घुस गए गोथरों में नानी बकी खोल के बड़का गोथरो नाना ने चोरवा बुड़ के मर जात ओ तो हुआ ना उल्टन बकी ते होता फिर जाए के गोथरुआ में लगाई से चोर निकल के भगल सिपाही ना पकड़ पाई से बारा अफसोस के बात है भैया बड़ी अफसोस के बात है कि सिपाही ओके ना पकड़ पाई से और हमारे देखे में एक घंटा हो गया है हमारे यारो।

0: तो हमारी जनता, हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे जनता, घड़ी की ओर देखा जाए तो ये घंटा तो हमारा हो चुका है, तो समाप्त तो करना ही पड़ेगा ना।
1: मिका दो मैं सिंगवा सिंह दे आला दे मासरा दिनु सब ड्राई बेदी दिनु सब रोकना ग्रोंग जैसा लेरा हरफारे फो रोकना ग्रोंग फामुस रोको ओके टेक एम बॉय।

मई तो लाई है कौची मजेदार लाए ही और उस्तादों के उस्ताद हरीश बालक का गीत आपको हम सुनाए है दोस्तों। तो कुछ आज लोकल सॉन्ग आपको हम सुनाएंगे। तो हम चलते हैं राम प्रसाद राम खेलावन के ओर, वो क्या गाते हैं।

और कठिन भिन्न थोरा। तो ये गीत हम आप लोग को सुना दिए हैं हमारे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं और पातर मोरे लग्या रॉबी गोगार इस गीत को गाए हैं। चलो सुना जाए।

0: सुगनवा तू और पांती मोरा ले जा सुगनवा तू। कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे हमारे यारो, तो कुछ बैठक गाना और लोकल सॉन्ग अपने पुराने पुराने कलाकार सुरीनाम के हम याद करते हैं। और उसमें से एक कलाकार थी श्रीमती औधराजी घिसई डूबे उस्ताद हरीश बाल के साथ मेरे साथ साथ श्री राम प्रसाद राम खेलावन और मेरे ख्याल से ढोल बजाए थे रकीब ने। दोस्तों आओ सुना जाए।
1: गणपति सुधा बुद्ध दे।

औरो सरजू में करो स्नान श्रीमती औधराजी घिसई दूबे उस्ताद हरीश बालक साथे साथ श्री राम प्रशांत राम खेलावन रकीब जी भी उसमें उस्ताद को उस्ताद है दोस्तों। तो हम चलते हैं उस्ताद देवा के ओर। देवी दीन घोरई इसका असली नाम है और जिसे लोग देवा के जान से जानते हैं। बहुत मशहूर थे अपने जमाना में, अभी तक उसका गीत बहुत लोग पसंद करते हैं। तो आओ चला जाए उस्ताद को उस्ताद देवा क्यों रे।

और कन्हैया कन्हैया पुकारा करे देवी दीन घुराई, जिसे लोग डेबा के नाम से जानते दोस्तों। और इसे पुराने उस्तादों का गीत आप लोग को हम आज सुनाएंगे, उसके बाद हम चलते हैं और बैठक गाना। और उस्ताद वो है जगदीश, जगदीश है दोस्तों। और ये कौन जगदीश है जो गाए है चिरैया बिन बोले, चिरैया बिन बोले, और ये जगदीश गाए है दोस्तों। तो जगदीश का ये सॉन्ग आओ सुना जाए।

और चिड़ैया बने बोले मैं ना जाऊंगी, भैया बोले हम ना जाऊंगी। तो उसके बाद हम चलते ही एक गीत है, ये गीत बहुत मशहूर थे सूरीनाम देश में, बहुत मशहूर गीत थे और वो है शुकी अक्कल का दोस्तों। और हम खुद ही इस गीत को बहुत दिन हो चुका है नहीं सुना है, और आज रेडियो फाहून के माध्यम से हम आपको सुनाने चाहते हैं, और वो है सुकी अक्कल का ये जोंग है।

als ze maar een goeie is. Dan gaat het om wie dan ook mensen. Tja he, jo bhi mile, lekin acha hona chahiye. To ye baat hai, suki kal ka zong dosto, koi zamana mein. Aur wo ani bodha. शायद पुराने लोग की तो पता होगा, हमारा यौंगर को शायद मालूम बहुत कम होगा, लेकिन आनी बोधा भी अपने जमाने में अपने समय पे बहुत पॉपुलर थे भैया। कौन ऐसन जगह पे आनी बोधा का गीत नहीं होते थे। तो आप लोग को हम चलते हैं एक गीत की ओर, फन आनी बोधा का ये सॉन्ग है।

ये कुछ पुराने क्लासिक ओल्ड यानी कि उस्तादों के जो उस समय पे कोई समय पे ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे दोस्तों। उसके बाद एक गीत को हमारा जो है भिखारी जी भी गाए थे, और वो समय पे कौन लोग है जो इस गाने पे नहीं नाचे थे या गुनगुनाए थे। तो हम चलते हैं उस्तादों के उस्ताद, और वो है भिखारी। भिखारी सॉन्ग को गए थे, आओ सुना जाए कौन से सॉन्ग। आज जैसे शुरू होगा आपको तो पता चल जाएगा।

भी छेद लेते हैं दोस्तों, स्कॉर्पियन भी लोग कहते हैं। और जो स्कॉर्पियन जो छेद लेंगे भैया, तब तो उसको दवा दारू कुछ और है। और जब बरैया छेदी तो फिक्स चलेगा, और फिक्स के बाद में स्लिंगोली चलेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं और वो भी हरिदत्त जयराम की ओर। और ये ना है हबड़ा कटावे वाला, ये कुछ और है दोस्तों, और सुना जाए।

और दोस्तों छोड़ दे पीना शराब के बातचीत है, हम एक गीत और जाते हैं सनातन की ओर।

बालमुआ के बालम और बालमुआ के बालम के बाद हम क्या लाते हैं दोस्तों, भोजपुरी सॉन्ग के मूड में आज हम हो गया है फिर से एक और हो जाए शिवानी सिंह का।

और पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह का भोजपुरी सॉन्ग है। अब लोग को हम कुछ मिक्स मक्स चलाएंगे, कुछ भोजपुरी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे नील कमल सिंह और क्या सुनाते हैं लड़की, ये लड़की क्या है दोस्तों, लड़की दीवानी।

दीवानी नील कमल जिंगा ये सॉन्ग है। तो अगला गीत क्या है दोस्तों, पवन सिंह अस्यल्पा राज का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों पवन सिंह का ये सॉन्ग है जो आप लोग को सुनाए हैं और आगे चलते हैं तमन्ना बतिया। तमन्ना बतिया क्यों?

ही देंगी। बोले पहले सॉरी तो बोल। तो सॉरी कब बोलेंगे दोस्तों? जब सॉरी के कुछ काम, तो सॉरी बोलना कब? जब आप कुछ कसूर करेंगे तब

और बुधराम होलास से दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जोंग है दोस्तों, चटनी जोंग। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे।

0: और ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों, कुछ सोकान चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेट सालिक की ओर, ये भी एक सोकान चटनी आप लोग को सुनाएंगे।
1: ना

0: en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: और दोस्तों आप लोग को आज हम कुछ गर्मा गर्म हॉट वॉर्म सॉन्ग सुनाएंगे। हमारा प्रोग्राम आप सुनते रहना, यूली मुख वेल में खान स्विंग और न खाली स्विंग करियो, नाच सके झूम सके है। और फरखेट इट ओक ऑन्स द बेल वारे नागिन मन डोले मेरा और टंडोले भी है। दोस्तों हम जरूर जलते हैं, हम कहां जलते हैं, महबूबा की ओर। महबूबा क्या करते हैं,

ये दोस्तों मोफी के नाम थे शोले शोले एन शोले 1975 का सुपर हिट फिल्म थे। आज आप लोग को हम ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक सॉन्ग

और क्या भी खूब लगते हो, खूब खूब लगते हो, और कौन कौन खूब लगती हो, खूब लगती हो। फिल्म का नाम है धर्मात्मा रेमिक्स। रेमिक्स सॉन्ग हम लेकर आते हैं हमारे यारो, बस सुनते रहो सुनते रहो। खनीत इरफान, वहां सामा खनीत दुख।

और क्या क्या क्या क्या खूब लगते हो, और खाली खूब नहीं सुंदर भी लगते हो।

0: मूवी, मूवी का नाम है, मूवी के क्या नाम है अभी बताएंगे। जोंग का नाम है ये पर्दा, ये पर्दा, और हटाकर अपनी मुखड़ा को दिखा दो ना,
1: पर्दा हटा दो,

It is Johnny number one's time. And Johnny's Johnny Boy's time, man. और दोस्तों आप जानते हैं आज नाचना जरूर

0: भी राह है रहेरी, उसके बाद हम चलते हैं, क्या चलते हैं, कहां चलते हैं, रेडियो फाउंड में चलते हैं कि मेरे महबूबुआ और कयामतुआ और कैसे होगा, कैसे नहीं होगा।
1: Shakira on the beat
0: and beat.

और मेरी नसीब में तू है कि हम है। रमता जोगी, रमता जोगी, रमता जोगी।

और प्यार हुआ है, इकरार भी हुआ है, और जब प्यार होता है तो डरना मत चाहिए, जो डर गया समझो मर गया। और प्यार से कभी कभी डरना मत, वैसे स्टेरक तो बेंस। और जब घाम हो गया, जब घाम निकल गया, धूप निकल गया, तो छैया छैया चलना चाहिए।

और छैया छैया चलना, यारे मौसम मौसम मौसम, चाहे श्रीनाम में चाहे यहाँ पर, घाम में मत चलना, धूप मत चलना, नहीं क्या होगा, छतरी लेकर चलना। और छैया छैया के बाद हम चलते हैं, अगर तुम्हारा दिल किसी पे आ गया और किसी ने जो आपको पुकारते हैं तो क्या करना।

यहां से पुकारते हैं कि आ जाना। और अगर आपको प्यार हुआ, दिलदार हुआ किसी परदेसिया से, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए, चाहे आपकी परदेसिया यहां हो, डेनहाग में, अमस्टरडम, यूट्रेख्ट, ग्रोनिंगन, पारामारिबो, सरमक्का, निकेरी, जहां भी हो अपने परदेसिया को याद करना, जरूर करना। दिस इज जॉनी नंबर वन प्राइम टाइम।

Oh.

परदेसिया परदेसिया इन परदेसिया एंड मेंसे नाद परदेसिया अब क्या होगा दैट इज अनफॉर्चुनेट।

और अनीसी अनीसी अनीसी और उसकी तो आए बाहर और जाने से क्या होगा रे बिग सॉन्ग ओह अरेंजमेंट से और होते हो पेज कभी किसी को चूम नहीं लेना किसी बात करना होठों से तो क्या होता है।

और ओठों पे ऐसी बात ही, और ओ बात क्या है दबा के चली आई। और उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं, और ओ मेरी महबूबा।

अहंत हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 20 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार मत करना दोस्तों, कारण कि जब ज्यादा प्यार करते हैं और प्यार में कभी टकराव जो हो जाता है तो बस आंसू ही बहते हैं, उसके बाद हम आउट चलते हैं और खबरों का हार्ट सॉन्ग।

बस याद ही याद रह जाती है। और आज हम आप लोग को अनहील यूरमैन से हम आप लोग को दर्द भरी गीत को सुनाएंगे, और खबरों का हार्ट सॉन्ग। अगर आपका दिल टूट गया है, प्यार में धोखा को पाया है, तो ये गीत आपको आप सबके लिए है। हेल फिल्मेन से सैन खसकाइद प्यार में धोखा पाए से आप रेडियो के करीब रहना और इस गीत को हमारा प्रोग्राम को सुनिए। और अगर हो सके तो आपकी आँख में या आंसू निकल आए तो उसको पोछ देना दोस्तों। तो हम चलते हैं। जो कोई किसी से बेवफा किया है तो बेवफाई भी हुआ है, बहुत बेवफा लोग करते हैं, उस सब के लिए इस गीत है।

रिका दोस्तों, दर्द भरी खबरों का हर सौ आज हम आप लोग को सुनाए हैं। किसी के दिल आपने तोड़ दिया है या आपके दिल टूट गया है तो आपको यहाँ पर हम जख्म देते हैं अपने गीतों से।

नहीं आई तो अब किसी से हमें क्या कहना है। तो आपको खबरों का हर चौंक के ओर हम जाते हैं। वफा नाराज आई तो

रे वफाना राज आई तुझे हर जाई खबरों का हार्ट सॉन्ग। आपके दिल अगर टूट गया है या टूटने वाला है या चोट लग गया है तो आपकी आंखों में हम आंसू नहीं प्यार देखना चाहते हैं। इस सॉन्ग से आपके जो दर्द है उसको हम भरते हैं, तो आओ मिलकर ये इस गीत को सुना जाए।

दर्द भरी खबरों का हर सॉन्ग किसकी किसी के, अगर जो आपके यानी कि दिल टूट गया है या किसी ने तोड़ दिया है तो मत घबराना, जो टूट जाता है वो एक दिन जुड़ भी जाता है। आपको हम बताते हैं कि तड़प तड़प के इस दिल को लोग याद करते हैं और इस दिल से पुकारते हैं, लेकिन जब तक उसकी समय नहीं आएंगे वो दिल नहीं जुड़ते हैं। तो एक और गीत की ओर चला जाए।

नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी, समीर चाह रहा है। पापा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी, उठो। समीर हमेशा के लिए जा रहा है, जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। जाओ नंदिनी।

0: और ये सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों। और उसके बाद तो हम चलते हैं और दर्द भरी गीतों का प्रोग्राम आज हम आज चलाते हैं।
1: कुछ

तो रोना पड़ जाती है। दोस्तों ये दर्द भरी जोंग है जिसका दिल टूट गया है, अगर प्यार में धोखा भी मिल चुका है तो सबके लिए ये गीत है।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

आप लोग जानते हैं कि पुराने गीतों की मजा कुछ और है। हमारे जनता और हम चलते हैं। मीना कुमारी का एक फिल्म है, मीना कुमारी का एक फिल्म मौफी का नाम है, मौसी का नाम है बैजू भौरा। 1952 में एक सुपर हिट फिल्म ये थे। आओ सुना जाए क्या गाते हैं दोस्तों।

लता जी का ये सॉन्ग थी। हम चलते हैं अगला गीत की ओर, महेंद्र कपूर का और आशा जी का ये सॉन्ग है। और दोस्तों ये भी एक ओल्ड एंड गोल्ड पुराना फिल्म का ये सॉन्ग है, और यानी कि मूवी का नाम है पुराना घुमरा। आशा जी एंड महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है, आओ सुना जाए।

मुझको मन फन तुझको मेरा प्यार पुकारे मूवी के नाम है घुमरा। अगला सॉन्ग की ओर हम जाते हैं और आप लोग जानते हो एक भी सुपर हिट सॉन्ग है ये, आओ सुना जाइए क्या कहते हैं हमारे दोस्तों।

ये तो बताओ कि तुम मेरी कौन हो, अगर आपको ये पता होगा कि तुम और हम कौन हैं तो आप जरूर हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 6 2 0 7 7। हमारा लाइव आप लोग हमें तार कर सकते हैं रेडियो फाउन के माध्यम से। तो हम अगला गीत के ओर चलते हैं। नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है जिंदगी और मौत। 1965 का ये क्लासिक सॉन्ग है।

और दिल लगा कर हम ये समझे मूवी का नाम है जिंदगी और मौत। दोस्तों, तो अगर आप चमेली को जानते होगे तो जरूर आप हमें तार करके बता सकते हैं कि चमेली कौन थे। दोस्तों, कौन थे ये चमेली, कौन थे दोस्तों चमेली? अगर आप चमेली के जानते नहीं होगे तो इस गीत से आपको पता चलेंगे कि चमेली कौन थे। और है आशा जी और परमा श्री मोहम्मद रफी का ओल्ड हिंदी एवरग्रीन सॉन्ग।

तो एक गीत यहां से है और मूवी के नाम है प्यार किया तो डरना क्या। पद्मा श्री मोहम्मद रफी का नीघ दिद्रिय सस्टकाये जो है।

और जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। मूवी का नाम है प्यार किया तू डरना क्या, लेकिन जो अगर प्यार किया है तो डरना नहीं है, लेकिन झूठ भी मत बोलना, झूठ भी मत बोलना, झूठ बोलने पर सजा मिल सकते हैं। और मूवी का नाम है तीसरी कसम।

झूठ बोलोगे तो आपको तो कहीं जाकर फरखलारिंग देना पड़ेगा, और वो कहां पर जाकर देना पड़ेगा इस गीत ने आपको बताए है। मूवी के नाम थी तीसरी कसम राज कपूर, मजमु किसका गया हुआ जो है। और उसके बाद तो हम चलते हैं एक और ओल्ड एंड गोल, करोड़ों की चुराने वाला, The Heart of Millions, Mighty Mukesh.

और धीरे रे चलो मेरी बाकी रनिया के बाद हम चलते हैं दादा हेमंत कुमार की ओर रे। और दादा हेमंत कुमार भी बहुत बेमिसाल गीत को गाए हैं। मूवी का नाम है 20 साल बाद। 1962 का ये सॉन्ग है दादा हेमंत कुमार।

उमर के भी हज़ारों को याद आएंगे, उमर के भी हज़ारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में भी जयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयाँ पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है, तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है, भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आप सभी को हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। मुझसे पहले आप सभी के सेवा किए थे श्याम पूरन जी, यानी भाई श्याम पूरन जी, और उन्होंने मुझे देवी कहा। मैं तो कोई देवी वेवी नहीं हूँ। सुनने वालों, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ।

ये सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊं ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर भजन हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते और सभी दुखी प्राणियों के लिए, और ख़ास करके ये भजन हम पेश करते हैं भाई जगदीश लक्ष्मण जी के वास्ते और प्रदीप नाथू जी के वास्ते, क्योंकि इन दोनों का तंदुरुस्ती जो ठीक नहीं चल रहा था लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर है, तो ख़ास करके इन दोनों के नाम हम ये भजन पेश करते हैं और आप सभी सुनने वालों के लिए। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सुनो रे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी, हरि के भरोसे हाको गाड़ी। और ये गीत हमने वेरी वेरी स्पेशली चलाए हैं जगदीश लक्ष्मण जी के वास्ते और प्रदीप नाथू जी के वास्ते, क्योंकि इन दोनों का तंदुरुस्ती कुछ ठीक नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। और सभी दुखी प्राणियों के लिए हमने ये भजन चलाए हैं। मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं सुनने वालों।

दमाई थी मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। होता है सुनने वालों, याद ना जाए बीते दिनों की। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं

ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही आपका हर एक पल हो। ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही आपका हर एक पल हो। जितनी खुशियाँ आपके पास आज है इससे भी ज़्यादा कल हो। जो अभी अभी अपने बिस्तर से उठे हैं उसे हम गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे। प्रोग्राम को आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं।

जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। अभी आप सुन रहे थे किशोर दा की आवाज़ में, और ये तो सच्चाई है सुनने वालों। मुझे ज़िंदगी की सच्चाई उस वक्त पता चली जब रास्ते पर पड़े फूलों ने मुझसे कहा कि दूसरों को ज़्यादा खुशबू देने वाले अक्सर यूं ही कुचल दिए जाते हैं। सुनने वालों, ये गीत पहले बहुत सारा चलते थे रेडियो पर, यानी रेडियो पर, और जब किसी के शादी होती थी या विवाह संस्कार होते थे तो बहुत सारा ये गीत चलते थे। जीवन में पिया तेरा साथ रहे।

सुनने वालों, पहले ये गीत बहुत ज़्यादा रेडियो पर चलते थे विवाह संस्कार के उपलक्ष्य पर, शादी के उपलक्ष्य पर। और एक गीत ये भी है फ्रॉम द मूवी साथी से आप सुनेंगे, मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है।

मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, फ्रॉम द मूवी साथी से हमने पेश किया है सुनने वालों। मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा, ये तो सच है सुनने वालों कि मेरा प्यार आप लोगों के लिए ऐसा ही है। फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

आप सुन रहे थे मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, फ्रॉम द मूवी वो रात फिर नहीं आएगी। हम सफ़र मेरे हम सफ़र लता जी आपको सुनाने वाले हैं, फिल्म का नाम है पूर्णिमा।

आप सुन रहे थे हम सफर मेरे हम सफर पंख तुम परिवाज हम, लता जी के साथ में द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी पूर्णिमा। कर ले दिल की बात, अरे कर ले दिल की बात, आज मौका है पता है, यानी पता नहीं है कि ये मौका फिर मिले ना मिले, तो अगर आपको दिल की बात करनी है ना तो ज़रूर कीजिएगा।

कर ले दिल की बात आज मौका है। सुनने वालों पता नहीं ये मौका फिर मिले ना मिले, अगर आपको दिल की बात करनी है ना तो ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। फ्रॉम द मूवी एक हसीना दो दीवाने।

अभी आप सुन रहे थे दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें।

हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में यानी 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी।

बेताब से भी आप सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत। और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो एक भजन है, और ये भजन हम पेश करते हैं आप सभी सुनने वालों के लिए और सभी दुखी प्राणियों के लिए।

कितने सुंदर शब्द हमने पेश किए हैं आप सभी सुनने वालों और सभी दुखी प्राणियों के लिए। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में।

मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं, तुम बिन जाऊं कहाँ।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे तुम बिन जाऊँ कहाँ कि दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह सम कभी तुमको चाह के। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों लता जी की आवाज़ में आप सुनेंगे इस बार, और फिल्म का नाम है कति पतंग, गीत का बोल है ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कति पतंग है।

0: घंटी के आइकन पर मेरे आने वाले।
1: अभी आप सुन रहे थे ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कति पतंग है। उपहार है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं माझी नैया ढूंढे किनारा।

अभी आप सुन रहे थे माझी नैया ढूंढे किनारा। मुकेश जी की आवाज़ में हमने ये गीत पेश किए हैं। फ्रॉम द मूवी उपहार से आपने सुने हैं। फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप सभी ने चुन किए हैं सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जाए।

आप सुन रहे थे जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जा। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत शुरुआत करने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को बता दूं कि आधे घंटे तक लगातार हमने कुछ सेंटीमेंटल सॉन्ग्स आप सभी के वास्ते पेश किए हैं, और अब कुछ बदलाव हम लाने वाले हैं प्रोग्राम में। तो चलिए ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे अरे आने वाले आ तू देर ना लगा, और फिल्म का नाम है कहीं और चल, लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक फूल दो माली से हम पेश करते हैं सुनने वालों, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर।

एक फूल दो माली से भी आप सुन रहे थे सुनने वालों, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, हो गए तेरे हो गए ये ना पूछो कब क्यों और कहाँ। फ्रॉम द मूवी यानी द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं प्रोग्राम में

अभी आप सुन रहे थे हो गए तेरे हो गए प्यार में तेरे खो गए ये ना पूछो कब क्यों और कहाँ। द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते लता मंगेशकर जी आपको सुनाने वाले थे। रुक जा ऐ हवा फ्रॉम द मूवी शागिर्द से हम पेश करते हैं।

रुक जा ए हवा, थम जा ए बहार, भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। और जरा सा हम देखे तो सीता और गीता, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं एक और गीत है ये, जिसमें कुछ हवा की बातें आती है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं

अभी आप सुन रहे थे हवा के साथ साथ घटा के संग संग और साथ ही चलो। घड़ी की ओर जबकि हम देखते हैं तो ठीक यानी समय हो चला है विज्ञापन का, तो चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुम मेरी आवाज़ लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। फ्रॉम द मूवी बेताब से भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। सरसा हम देखे तो फिल्म का नाम है बारिश। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला इकराम।

अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम है बारिश। इसी फिल्म से हमने पेश की है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक ग्राम। सुनने वाले कुछ सेंटिमेंटल सॉन्ग्स हम आप सभी के वास्ते पेश करने वाले हैं, और उसके बाद में कुछ लव सॉन्ग्स भी हम चलाएंगे। बाजी किसी ने प्यार की, जीती या हार दी,